तहदुबियले मान एक न चेतस मूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलियार हाउ ना हाउ जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म पहया प्रणवत नानक तिन की सरना जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा।

हो सरमा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चाओ पाई पुनराशिषका काटा सीसा। श्री अस्केत जगत के ईसा। पुहपन ब्रिष्ट गगन ते पई सभिन आन बधाई दई। धन धन लोगन के राजा। दुष्टन दाह गरीब निवाजा। अखल पवन के सृजन हारे। दाह जान मोहले हुए बारे। कबे ओ बाच बेनती चाओ पई। हमरी करो हास दह रक्षा। पूर्ण होए चित की इच्छा। ताव चरणन मंद रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो। आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा। सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए। सब बैरन कौ आज संगरिए। पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा। तुम हिंसाड कोई अवर न त्याऊं। जो बर चाहां सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी आहे। चुन चुन सतर हमारे मारी आहे। आप हाथ दे मुझे उबरिए। मरण काल का त्रास निवरिए। हूजो सदा हमारे पच्छा। श्री अस्तु जू करिए हो रक्षा। राख ले मोहे राखन हारे। साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बांध दुष्टन के हंता। तुम्हो पुरी चतुर्दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप धरा। काल पाए शिव जू अवतारा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। सकल काल का किया तमासा।

जगत मैं जाप तुम करहो सहाय दोहरा जे जे तुमरे तिहन को नित उठते हैं संता अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुरुष की देह मो कोटक बेसन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा के ते रावण सास क्रूर जलेस दोहरा

बचाओ पाई। जो एह कथा सुने अर गावै, दुख पाप तेह निकट न आवै। बिसन भगत की ए फल होई, आदि ब्याद छुए सकै न कोई। सम्मत सत्रह है सहस पचावन, हाड़ वधि प्रथम सुख दावन। तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा, पुहुल परी लहो लेह सुधारा। दोहरा नेत्र तुंग के चरण तार, सद्रव तीर्थ रंग। श्री भगवत पूर्ण कियो, रागबर कथा प्रसंग। दोहरा

नाम मान लियो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जानियो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार कव छाड़ कै गयो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार।

प्यार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, काल मह एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सनो कृपाल संभाले साहे साहे, बिरथा कोई न जाए जे आवै तो दे आहे। श्लोक महला पंजवा। अंतर गुरु आराधना जिहवा जाप गुरनाओ, नेत्री सब गुर पेखना श्रमणी सुनना गुरनाओ। सात गुर से तीरते आ दरगह पाई अठाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनो एह वात दे। जाग मह उत्तम खाडी अहे, बिरले के ई के महला पंजवा।

सो कहु टल गुर सेविया अहंस सहज सुभाए दर्शन परसिया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिख दुख संबंधी नूर अरसहु कुर।

सो हमारी रक्षा करे गुरु कलगी धार बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।

हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड बिखै बिख खाई माया मोह भरम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक

तेरा नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा। काम क्रोध नगर बहु परहया। मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। मन हर लिव मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे। कर दंडावत पुन वड्डा हे। रहाउ साकत हर रस साध न जाने आ। तन अंतर हम मैं कंडा हे। ज्यों ज्यों चल हे चुभै दुख पाव हे। जमकाल सह हे सिर डंडा हे। हर जन हर हर नाम समाने। दुख जन्म मरण

जैसा दोस्त चाहिदा सी वैसा दोस्त नहीं है, जैसे मां बाप चाहिदे सन वैसे नहीं है, जैसी पत्नी चाहिदी सी वैसी नहीं है, या जैसा पति चाहिदा सी वैसा नहीं है। धार्मिक दुनिया च इन्हू कहने परिवारिक असंतुष्टि। असंतुष्ट मनुख अगर गुटका लेके पाठ करेगा तो क्या उसनों गुरु याद आएगा, परमात्मा याद आएगा? कतई नहीं। जिस तो असंतुष्ट है वह याद आएगा, बार बार रुचि उठे जाएगी। लोभाद दृष्ट पर ग्रहण जद बिद आचरण। असंतुष्ट मनुख जिथे बैठा होंदा है उत्थे उसका मन नहीं होंदा, उत्थे उसकी रुचि नहीं होंदी। ये भी मैं अर्ज कर देना, लोभाद दृष्ट पर ग्रहण जद बिद आचरण। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, दृष्ट बिकारी बंधन बांधे हों ताके बल जाई। सदके जाने उस तो जिड़ा अपनी दृष्टि नू बंधन पा लवे। अज तू दृष्टि नू नहीं रोक सकिया, कल हाथ पैर नहीं रोक सकेगा। अज दृष्टि तेथों बेकाबू हो गई है, कल तू पूरे दा पूरा बेकाबू हो जाएगा। दृष्टि नू खुल है, दृष्टि खुलेआम दूसरिया दे तन ते दूसरिया दे धन ते दूसरिया दे घर ते चली जाती है। कानून पकड़ नहीं सकता उसनों, पुलिस पकड़ नहीं सकती। दृष्टि कानून दी पकड़ दे च नहीं आउंदी। इनू कहिंदे ने परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि। कोई अपनी परालबत तो संतुष्ट नहीं है, जैसी उपजीविका है उस तो संतुष्ट नहीं है। तो मैं हुणे अर्ज की, असंतुष्ट मनुख की नजर अपने आप दे च नहीं आउंदिया, दूसरे दे तन ते दूसरे दे धन ते, क्योंकि अपने आप दे च वो असंतुष्ट है। असंतुष्टि तो अधर्म का जन्म आता है, संतुष्टि तो ही धर्म का जन्म आता है। एक तीसरी असंतुष्टि है परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि। तीसरी असंतुष्टि है व्यक्तिगत असंतुष्टि। ये भगतां दे अंदर आती है, गुरमुखां दे अंदर आती है, अपने आप दे असंतुष्ट। कहिंदे ने हे प्रभु, जैसा परिवार है ये तो ठीक है, भगत परिवार तो संतुष्ट होंदा है, गुरमुख परिवार तो संतुष्ट होंदा है। उनू पता है धियां पूत सब हर के किए, सबना को संबंध कर दिए। ये सारे संबंध परमात्मा दे बनाए संतुष्ट। जैसी जो है पूर्वले संस्कार सन वैसा संजोग जुड़िया। ऐसा पुरुष गुरुमुख व्यवहारिक तल पर भी संतुष्ट होंदा है, भाई जैसी प्रालभद है ठीक, लेकिन अपने आप दे संतुष्ट नहीं होंदा। वह कहिंदा जैसा मैं हाँ मैं ठीक नहीं हाँ, जैसा मैनू होना चाहिदा सी वैसा मैं नहीं हाँ। तो ये असंतुष्टि उसके मन से बोझ आती है कि हे प्रभु तू गुणा का सागर, मैं अवगुणा का सागर। मुझ अवगुण सह ना ही दोष। बाबा फरीद कहिंदे ने तू गुणा का सागर है पर मेरे विच अवगुण तेरा कोई कसूर नहीं। इतना वड्डा महान फकीर ये भी अपने आप दे असंतुष्ट है कि जिस तरह का मैनू होना चाहिदा सी मैं वैसा नहीं हाँ, हे परमात्मा मैं वैसा नहीं हाँ। ये तीन असंतुष्टियां ने, परिवारक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि और व्यक्तिगत असंतुष्टि। ये जड़ी असंतुष्टि है ये कातल डकैत दुराचारियों नू जन्म देंदी। परिवारक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि, दृष्टि दूजिया ते, तो किसे दिन दूजिया तक इस दे हथ पहुंच जाते हैं, इसके पैर पहुंच जाते हैं, और अपने आप नू काबू रखना औखा हो जाता है। सारी दुनिया दे कानून है, समाज दे नियम भी हैं, धर्म भी है, लेकिन धर्म नू तोड़ के, समाज दे नियम तोड़ के, कानून नू तोड़ के दूजिया की जान माल असमत अक्सर जो है खोली जाती है और खतरा रहता है।

भगत रविदास जी महाराज उस दौर विच बनारस विच पैदा होए ने, जद के भगती भाव दे संगीत नाल भारत दा कौणा कौणा सरशार होया होया सी। हर पासे भगती लहर, हर पासे भगत भावना विच डुबे हुए महापुरुष साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा वाक है, वैसे ता हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे हर युग विच हर समय विच भगत होंदे रहने संत होंदे रहने, लेकिन भारत दा मध्य काल भगती काल मनिया गया, जिस विच चौ दिशा विच भगत ही भगत पैदा होए। उसी भगती काल विच सूफी फकीरां ने भी अपने अमर संगीत दे राहीं इस देश नूं अध्यात्मिक तौर ते सरसब्ज कीता और मानसिक तौर ते उच्चा कीता, जीवन दी जाच दसी। रविदास जी महाराज उन्हां ही सिरमौर भगतां विचों एक महान भगत ने, पेशे दे चमार पर चमड़े तो उच्चे जीण वाले, पेशे तो मोची चमड़े दा कम करन वाले, पर शरीर दे चमड़े तो उच्चे होके उन्होंने सारी जिंदगी बतीत की। शरीर दे तल दे उते जो जी रहा है, चमड़ी दे तल दे उते जो जी रहा है, इंद्रियां दे तल दे उते जो जी रहा है, वास्तविक चमार ते ओही है, क्योंकि वो वेखदा है चमड़े नूं, चमड़े नूं ही सवारना जिंदगी दा मनोरथ है, चमड़े खलड़ी दा ही रस मारना जीवन दा लक्ष्य है। ऐसे पुरुषां नूं चमार आखिया जा सकदा है। चमड़े दा कम करदिआं होइआं सुरत चमड़े तो उच्ची रखनी, ए कोई भगत रविदास जी महाराज तो सिखे। उन्हां दा काल ऐसा सी कि चारों पासे रविदास ने अपनी भक्ति संगीत नाल प्रभावित कीता। हैरानगी दी गल है कि अनपढ़ जद विद्यक मंदरां दे दरवाजे भी आप लई बंद ने, धार्मिक मंदरां दे द्वार ते बंद ही सन, लेकिन ऐसी अगम्मी विद्या आप दे अंदरों फुटी, ऐसा अगम्मी संगीत आप दी चेतना दे चों प्रफुल्लत होया। दरअसल ये हकीकत है कि परमात्मा जद भी किसी दे अंदरों प्रगट होंदा है, बस वो गीत राही संगीत राही। संगीत और गीत परमात्मा दे बहुत निकट है, बहुत निकट है। संगीत एक कला है, गीत एक कला है, ते परमात्मा स्वयं भी एक कलाकार है, ऐसा महान कलाकार कि उसकी कला चारों पासे सानू देखण नूं मिलदी है। एक निक्का जिहा बीज धरती विच बो के जदों अंकुरित होंदा है, कोमल रूप उसका धरती तो बाहर निकलता है, सहजे सहजे विकसित होंदा है, शाखां पत्ते फिर उस दे चों जद फुल खिड़दे ने, फल लगदे ने, एक ऐसी महान कला है कि उस अदुत्ती कलाकार नू दाद दित्ते बिना रह नहीं सकदा मनुख अध्यात्म वासी। उसकी कला चारों पासे फैली हुई है, सागर दे चों भाप उठती है, उमड़ उमड़ के वो चारों पासे बरसती है, एक महान कला है। पहाड़ां दे च झरनियां दी रफ्तार और ए गुंजार, चारों पासे दा ए वातावरण दरअसल उस महान कलाकार दी कला दी ही प्रदर्शनी है। कदी कदी संगीतकार, चित्रकार, मूर्तिकार और लेखक लोग अपनी कला दी खास रूप विच प्रदर्शनी कराया करदे ने, पर उस महान कलाकार दी प्रदर्शनी कला दी हर वक्त हो रही है, हर थां ते हो रही है, जिस पासे भी निगाह मारीए कला ही कला है, चाहे आसमान ते झात मारीए, चाहे सागर ते निगाह मारीए, चाहे पहाड़ां दीआं चोटियां नूं वेखीए, ते चाहे धरती ते निगाह मारीए, चाहे पशुआं नूं वेखीए, पक्षियां नूं वेखीए, बनस्पति नूं वेखीए, हर थां ते उसकी कला उजागर हो रही है, प्रगट हो रही है, और वो ऐसा कलाकार है
ਕਿ ਹਰ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆਤਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਚੋਂ ਚਮਾਰ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣਾ, ਨਵੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ, ਔਰ ਮੋਏ ਹੋਏ ਢੋਰਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਜਦ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਮਧੁਰ ਕਲਾਮ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਦ ਆਪ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸਨ, ਕਹਾਂ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਆਲਮਾਨਾ ਹੈ, ਫਿਲਸਫਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਫਿਲਸਫੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਮਧੁਰ ਅਮਰ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੰਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਮੋਚੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਸਾ ਚਮਾਰ ਖੋਜਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੇ ਔਰ ਜੁਲਾਹੇ, ਮਾਮਾਰ, ਕੁਮਾਰ, ਨਾਈ, ਤੋਬ

परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उचारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आद गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भक्ति कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती कोई प्रेमा भक्ति दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआं उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिती। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकत है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। कहिंदे ने इन्हां तीन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडन वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन। साध संगत बख्शो आशीष और उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो कृपालता।

पट कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आद गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालु जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। धन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिवें असी बाणी विचों धन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन कहा। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका सिर जुला जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नूं तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हथ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिवें तंदूर दे विच लकड़ां बलदियां ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थका जे पैरां नाल चलदियां होयां थक जावां, सिर जुला मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी भटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इना खडियां नू बालन बना के तंदूर विच फूक ना, तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरां ने तन दे अंगा ने की बिगाड़िया, तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वाहगुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनू तक लै। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इह शब्द आया प्रेमा भगती, जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई, कि प्रेम नाल लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी कोई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असी आम तौर ते शब्द भी वरतने हैं कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने हैं, साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है, कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं इत्थो तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल जमीन दे विच पैदा होए पौधे जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख
परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नू टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है, प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती कोई ओ दात है जिहड़ी वक वक जीवां विच परमात्मा ने वक वक तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुन्ना, हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है, कहन लगे सरवर कमल किरण आगाशी बिगसै सहज सुबाही। हुण कमल दा फुल जिहड़ा ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा ओ आसमान विच है, दोनां दा करोड़ां माइल्स दा करोड़ां कोह दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ां मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती, ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ां कोह दी दूरी होण दे बावजूद भी ओहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ओह किहड़ी ताकत है, ओह किहड़ी मिकना ती शक्ति है कि जिहड़ी इस कमल दे फुल नूं चिक्कड़ विच खिड़े होए नूं पूर्ण तौर ते खिड़ा दिंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां कि प्रेम भाई साहिब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक, कि गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने ए ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दित्ती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने, चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है, दोनां दी दूरी है। ना तां चकोर नूं किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जां किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके उहनूं सिखाया कि आओ देख रात नूं चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नूं इक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर इक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दित्ती, चकोर नूं किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच ऊ पैदा होए चंद्रमा नूं देख के तू सारी रात इक टिक इक नजर नाल तकी जाना है। हालां कि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई वारी चंद्रमा नूं देखना हो जांदा है, क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा है आसमान ते इक टिक उहनूं नजर टिका के देख दीए, चंद्रमा जदों ये अपनी थां सारी रात बदलता है अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है, पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उहने ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नूं अपने जिस्म नूं घुमाना है, उहदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नूं उहने सवेर तक लहिंदे वाले पासे आउणा है। चकोर अपने पैरां नूं सारी रात इक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नूं ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए, गर्दन मोड़दी है कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उहनूं अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल तां केवल अपनी गर्दन नूं झुका के अपनी पिट ते ला लैंदी है ते कई वारी ओहदी गर्दन झुकना भी ओहदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर ओह किहड़ी खिच है, चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दित्ती, चकोर नूं किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर लई कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नूं जे किते मनुख समझे उसे खिच नूं ही प्रेम किया गया है। हुण ओह दिस नहीं रही पर ओहदा चंद्रमा नाल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचों अर्ज कर रहे हैं, भाई साहब ने पहला बचन किया, चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, प्रेम है ते ओ एक टिक चंद्रमा नूं देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लानी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे ने देखो परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच एक जीव विच एक पंछी विच भी पैदा कर दिता, एक टिक हो के चंद्रमा नूं देख रही है। चंद चकोर प्रीत है लाए तार निखाले,
चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले। हुण इत्थे पावे शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है। दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानन विच उन्हां दा मिलाप है ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण इक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा उहदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी उहदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी उहदी सोचण दी शक्ति नहीं। मनुख जितना वह कोई कार विखार भी नहीं कर सकता, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं सकून नहीं जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण उह केड़ी खिच है जिहड़ी सारी रात कुरलांदे रहे पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती की, एक टेक होके ते अर्ज कर रहे हैं कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा की है। कमल विच खिच है सूरज नूं देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है मिल खून सुखाले, नेहो कवल जल जानिए खिड़ मूंह बखाले। खुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है, छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देरे ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जिहड़ी दिसदी नहीं ओह खिच पानी विचों उहनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन कीता, कहन लगे मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उहनूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। ओह असमान दे उत्ते ओह धरती दे उत्ते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पहला पान लग पिया ते अपने पंखों ने पूर्ण तौर ते खलार लै बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जेड़ी बदल नूं देख के खड़ाओ विच आया ते नचन लग पिया। पपीए वल झाती मारीए, सच जाण्यो बाकी साल दे महीने पपिया कदी भी उच्ची नहीं पुकारदा, पर जदो खाड़ ते सौण दा महीना हुंदा है भादों दा, उदो पपीए दे गले विच वी राग पैदा हो जांदा है, ओह वी बदलां नूं देख के उच्ची उच्ची पुकार लग पिया है। उहदे विच वी इक खिच है, चकोर विच, कमल फुल विच, चकवी विच, मोर ते बबीए विच, ते सच जाणू मां ते पुत्तर दी वी इक खिच है। इस्त्री दी पति ते पत्नी दे अंदर वी इक दूजे प्रति खिच है। पर भाई साहब ने सारियां गल्लां करके कहन लगे चंद्रमा दी चकोर नाल प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, पर सच जानी

0: जैसे मैं न लगे जलाए,
1: ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रकाश,
0: जैसे तर ऊपर आकाश,
1: ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान,
0: ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान,
1: ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते उच्चा,
0: मन अपने है सब ते नीचा,
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भये,
0: नानक जन प्रभु आप करे,
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना,
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना,
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया,
0: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न भया,
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी,
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी,
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता,
0: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता,
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान,
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपरयास,
0: ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा,
0: ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा,
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा,
0: ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा,
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए सुफला,
0: ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला,
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी जप सगल संसार,
1: ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बसे प्रभ संग,
1: ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार,
0: ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार,
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत,
0: ब्रह्म ज्ञानी अंगुर त्यागत,
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद,
0: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद,
1: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश,
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता,
0: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता,
1: ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत,
0: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र,
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाई है,
0: ब्रह्म ज्ञानी को बरबर जाइए,
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
1: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है,
0: ब्रह्म ज्ञानी के सगलवान माहे,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद,
0: ब्रह्म ज्ञानी को सताया देश,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाखर,
0: ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर,
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता,
0: ब्रह्म ज्ञानी सत जीव है नहीं मरता,
1: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता,
0: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ,
1: ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार,
0: ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार,
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी,
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी श्लोक,
1: और धारै जो अंतर नाम, सर्व में भेखै भगवान, निमक निमक
0: ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निस्तार, अष्टपदी
1: मिथ्या नाही रसना परस,
0: मन में प्रीत नरंजन दर्श,
1: कात्रिया रूप न भेखै नेत्र,
0: साध की टहल संत संग हेत,
1: कर्ण न सुने काहूं की निंदा,
0: सब ते जाने आपस को मंदा,
1: और प्रसाद विद्या पर हर है,
0: मन की वासना मन ते टरै,
1: इंद्री जत पंच दोख ते रहत,
0: नानक कोट मदे को ऐसा परस,
1: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न,
0: विष्ण की माया ते हुए भिन्न,
1: कर्म कर्त हो वैने कर्म,
0: इस वैष्णो का निर्मल धर्म,
1: काहूं फल की इच्छा नहीं बांचै,
0: केवल भगत कीर्तन संग रचै,
1: मन तन अंतर सिमरन गोपाल,
0: सब ऊपर होवत कृपाल,
1: आप दृढ़ अबरह नाम जपावै,
0: नानको वैष्णो परम गत पावै,
1: भगवती भगवंत भगत का रंग,
0: सगल त्याग दुष्ट का संग,
1: मन ते बिन सह सगला भरम,
0: कर पूजे सगल पार ब्रह्म,
1: साध संग पापा मल खोवै,
0: इस भगवती की मत उत्तम होवै,
1: भगवंत की टहल करै नित नीत,
0: मन तन अर्पै विष्णु प्रीत,
1: हर के चरण हृदय बसावै,
0: नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै,
1: सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है,
0: राम नाम आत्म सुध है,
1: राम नाम सार रस पीवै,
0: उस पंडित के उपदेश जग जीवै,
1: हर की कथा हृदय बसावै,
0: सो पंडित फिर जोन न आवै,
1: वेद पुराण सिमरत बूझै मूल,
0: सुख मैं जाने स्थूल,
1: जो वरना को दे उपदेश,
0: नानक उस पंडित को सदाया देश,
1: बीज मंत्र सर को ज्ञान,
0: जो वरना मैं जपे को नाम,
1: जो जो जपे तिसकी गत होए,
0: सा संग पावै जन कोए,
1: कर कृपा अंतर उतार है,
0: बस प्रेत मुक्त पात्र को उतार है,
1: सर्व रोग का यो खद नाम,
0: कल्याण रूप मंगल गुण काम,
1: काहूं जुगत कितने न पाइया धर्म,
0: नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म,
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास,
0: जिसका नाम सत राम दास,
1: आत्म राम तिस नदरी आया,
0: दास संतन पाए तिन पाया,
1: सदा निकट निकट हर जान,
0: सो दास दरगाह परवान,
1: अपने दास को आप कृपा करे,
0: जिस दास को सब सोची परे,
1: सगल संग आत्म उदास,
0: ऐसी जुगत नानक राम दास,
1: सब की आज्ञा आत्म हितावै,
0: जीवन मुक्त सो कहावे,
1: तैसा हर्क तैसा उस होग,
0: सदा अनंत नाही वियोग,
1: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी,
0: तैसा अमृत तैसी बिकाटी,
1: तैसा मान तैसा अभिमान,
0: तैसा रंग तैसा राजान,
1: जो बरताए साई जुगत,
0: नानक को पुरख कहिए जीवन मुक्त,
1: पार ब्रह्म के सगले ठाऊ,
0: जित जित घर रखे तैसा तन नाम,
1: आपे करन करावन जोग,
0: भावे सोई पन होग,
1: असरे आप होए अंत तरंग,
0: लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग,
1: जैसी मत दे तैसा प्रकाश,
0: पार ब्रह्म करता अविनाश,
1: सदा सदा सदा दयाल,
0: सिमर सिमर नानक पहे निहाल, श्लोक
1: उस्तत करे अनेक।

0: ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੁਜਾਰੀ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਭਈ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਬਨ ਪ੍ਰਮੈ ਉਦਾਸੀ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਬੀਤ ਕੇ ਸਰੋਤੇ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸਰ ਹੋਤੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਕਵ ਕਾਵ ਵਿਚਾਰੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵਹੇ,
1: ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਭਈ ਅਭਿਮਾਨੀ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭਿਗ ਆਤਮ ਨੇ ਕੋਰ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦਰਬ ਕੋ ਹਿਰਹੇ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸ਼ਰਮ ਮਾਹੀ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰਮਾ ਹੈ,
0: ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਭ ਹੋਤੇ ਤਿਤ ਲਗਨਾ,
1: ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਰ ਬ੍ਰਿਖ ਨਿਪਜਾਏ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ਼ ਭੂ ਮੰਡਲ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਆ ਸੂਰ ਨਖਤਰ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸ਼ਿਰ ਛਤਰ,
0: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ,
1: ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੈ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮ ਸਾਤਕ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤਿ ਅਰ ਸ਼ਾਸਤ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕੇ ਨਿਰਪਸਾਚ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮਿਰਗਾਚ,
0: ਸਾਥੇ ਨੇਰਾ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ,
1: ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤਰਿਆ ਭਰਪੂਰ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮ ਹੈ ਜੀਵੈ ਮਰ ਹੈ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਫਿਰੈ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠ ਸਹੀ ਖਾਹੇ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲ ਥਕ ਪਾਹੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀ ਏ ਧਨਵੰਤ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਮੈਂ ਚਿੰਤ,
0: ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੀ,
1: ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਭਈ ਬਹਿ ਰਾਗੀ,
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਖਤ ਲਿਵ ਲਾਗੀ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜੰਤੇ,
1: ਆਤਮ ਮਹਿ ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਵਿਆਸ,
1: ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗ ਹੈ ਸਤਸੰਗ,
1: ਭਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ,
0: ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ,
1: ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ,
1: ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ,
1: ਕਈ ਜਗਤ ਕੀ ਨੋ ਵਿਸਥਾਰ,
0: ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ,
1: ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ,
1: ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ,
0: ਤਾਂ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਈ,
1: ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ,
1: ਜਿਨ ਹੋਵਤੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ,
1: ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਇੱਕੋ ਨੇਤਰੇ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਹੈ,
1: ਅਮਰ ਭਏ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ,
0: ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਹਿ,
1: ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ,
0: ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸੰਭਾਰੀ,
1: ਨਾਨਕ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ,
0: ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਈ,
1: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰ ਨੇ ਜਲ ਥਲ ਮਈ ਅਲ ਸੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ,
0: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋਗ,
1: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ,
0: ਫਿਰ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪ ਨਹਾਰਾ,
1: ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ,
0: ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਅਧਾਰ ਰਹਾਵੈ,
1: ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ,
0: ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ,
1: ਹੁਕਮੇ ਐਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ,
0: ਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ,
1: ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ,
0: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਮਨੋ ਗਤ ਪਾਵੈ,
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ,
0: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰੱਖੈ,
1: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ,
0: ਰੱਬ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤ ਉਧਾਰੈ,
1: ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੈ,
0: ਦੋਹਾਂ ਸਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ,
1: ਖੇਲੈ ਬਿਕਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ,
0: ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ,
1: ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਔਰ ਨ ਆਵੈ,
0: ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ,
1: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ,
0: ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਪਿਛਲੇ,
1: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ,
0: ਮਨ ਜਾਣਤ ਵਿਖਿਆ ਮਹਿ ਰਚੈ,
1: ਜੇ ਜਾਣਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚੈ,
0: ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦਹ ਦਿਸਤਾਵੈ,
1: ਨਮਕ ਮਾਹੀ ਚਾਰ ਕੁੰਡ ਫਿਰ ਆਵੈ,
0: ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ,
1: ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ,
0: ਛਿਨਵੈ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ,
1: ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ,
0: ਜਾਂ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ,
1: ਜਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦਹ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ,
0: ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੈ ਬਖਸ਼ੀਸ,
1: ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਣੇ ਜਗਦੀਸ਼,
0: ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ,
1: ਕਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ,
0: ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ,
1: ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ,
0: ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਹਾਥ,
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ,
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪਰਾ ਜੀਓ,
1: ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫਨ ਥੀ,
0: ਪ੍ਰਭੁ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ,
1: ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਗ ਹਰ ਕਰੰਗ ਹੱਸੈ,
0: ਪ੍ਰਭੁ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ,
1: ਪ੍ਰਭੁ ਉਭੈ ਕਾਸ ਪਿਆਲ,
0: ਪ੍ਰਭੁ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ,
1: ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਨ ਹਾਰ,
0: ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਰਤ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ,
1: ਪ੍ਰਭੁ ਸੋਏ ਰਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ,
0: ਪ੍ਰਭੁ ਮਹਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ,
1: ਪ੍ਰਭੁ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ,
0: ਪ੍ਰਭੁ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ,
1: ਪ੍ਰਭੂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ,
0: ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ,
1: ਪ੍ਰਭੂ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ,
0: ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵਹੀ ਰਹੈ,
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸਚ ਕਹੈ,
0: ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ,
1: ਪ੍ਰਭੂ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ,
0: ਪ੍ਰਭੂ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ,
1: ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ,
0: ਪ੍ਰਭੂ ਕੀਟ ਹਸ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਦੀਆ,
1: ਅਨਕ ਜੋਨ ਭਰਮੈ ਪਰਮੀਆ,
0: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸਵਾਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ,
1: ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਾ ਚਾਵੈ,
0: ਜੋ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ,
1: ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ,
0: ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ,
1: ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਰ ਨ ਆਵੈ,
0: ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ,
1: ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼,
0: ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ,
1: ਸਦਾ ਬਸੈ ਭਾ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ,
0: ਜਿਉਂ ਜਲ ਮਹਿ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ,
1: ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ,
0: ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਵਿਸਰਾਮ,
1: ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ,
0: ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ,
1: ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ नानक गर्भ गले अष्टपदी
0: जिसके अंतर राज अभिमान
1: सो नरक पाती होवत स्वान
0: जो जाने मैं जो बनवंत
1: सो होवत बिष्टा का जंत
0: आप उसको कर्मवंत कहावे
1: जन्म मरे भोजन परमावे
0: धन भूम का जो करे गुमान
1: सो मूर्ख अंधा अज्ञान
0: कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे
1: नान की है मुक्ति अगै सुख पावे
0: धनवंत होए कर गर्भावे
1: तरण समान का संग न जावे
0: बहु लश्कर मनुख ऊपर करे आस
1: पर भीतरता का होए विनाश
0: सत्य आप जाने बलवंत
1: होए जाए पसमंत
0: सेना बदे आप अहंकारी
1: धर्म राय तिस करे खुआरी
0: गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान
1: सोजन नानक दरगह परवान
0: कोट कर्म करे हों धारी
1: शरम पावे सगले बरथारे
0: अनक तपस्या करे अहंकार
1: नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार
0: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
1: हर दरगह को कैसे गवे
0: आप को जो भला कहावे
1: इसे भलाई निकट न आवे
0: सर्व की रेन जा का मन होए
1: कहो नानक ताके निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझते कश होए
1: तब इस को सुख नाही कोए
0: जब यह जाने मैं किस करता
1: तब लग गर्भ जोन में फिरता
0: जब धारे को बैरी मीत
1: जब लग नेचर नाही चीत
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग धर्म राय देश जाए
0: रब कृपा से बंधन टूटे
1: गुरु प्रसाद नानक हो छूटे
0: सहस कटे लख कोट तावे
1: रत्न आवे माया पाछे पावे
0: अनक भोग विखिया के करे
1: नैत पतावे खप खप मरे
0: बिना संतोख नहीं को राजे
1: सुपन मनोरथ फिर से सब काजे
0: नाम रंग सर्व सुख होए
1: प्रभागी किसे प्राप्त होए
0: कर्ण करावन आते आप
1: सदा सदा नानक हर जाप
0: कर्ण करावन करने हार
1: इसके हाथ कहां विचार
0: जैसी दृष्ट करे तैसा होए
1: आपे आप प्रभ सोए
0: जो किस पीनो सो अपने रंग
1: तब ते दूर सब हूँ कै संग
0: दूजे देखे करे विवेक
1: आपे एका पया ने
0: मरे न बिनसे आवे न जाए
1: नानक सथी रह समाए
0: आप उपदेश समझे आप
1: आपे रचिया सबके साथ
0: आप पीनो अपन विस्तार
1: सब कुछ उसका हो करने हार
0: कोसते पेन का हो किस होए
1: हाथ नंतर एक ऐसो
0: अपने चलित आप करने हार
1: गौत करे रंग अपार
0: मन में आप मन अपने माहे
1: नानक कीमत कह न जाए
0: सत सत सत प्रभु स्वामी
1: गुर प्रसाद के नै बखियानी
0: सच सच सत सब कीना
1: कोट मदै के बिरले चीना
0: भला भला भला तेरा रूप
1: अत सुंदर अपार अनूप
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी
1: घट घट सुने सर उन बखियानी
0: पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत
1: नाम जपे नानक मन प्रीत श्लोक
0: संत सरन जो जन पर सो जन उदर नहार
1: संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी
0: संत का दुखन हार जा कटे
1: संत का दुखन जमते नहीं छुटे
0: संत का दुखन सुख सब जाए
1: संत का दुखन नरक में पाए
0: संत का दुखन मत हो ही मलीन
1: संत का दुखन शोभा दे ही
0: न संत के हथे को रखे ना कोई
1: संत का दुखन थान भ्रष्ट हो
0: संत कृपाल कृपा जे करे
1: नानक संत संग नंदक भी तरह
0: संत के दुखन ते मुख पवे
1: संतन के दुखन काग ज्यो लवे
0: संतन के दुखन सर्प जोन पाए
1: संत के दुखन त्रिगत जोन करमाए
0: संतन के दुखन तृष्णा मह जले
1: संत के दुखन सब को छले
0: संत के दुखन तेज सब जाए
1: संत के दुखन नीच निचाए
0: संत दुखी का थाउ को नाही
1: नानक संत भावे ता ए पी कत पाए
0: संत का निंदक महा अतताई
1: संत का निंदक खन टिकन न पाए
0: संत का निंदक महा हत्यारा
1: संत का निंदक परमेश्वर मारा
0: संत का निंदक राज ते हीन
1: संत का निंदक दुखिया अर्दीन
0: संत के निंदक को सर्व रोग
1: संत के निंदक को सदा बिजोग
0: संत के निंदा दुख में दुख
1: नानक संत भावे ता उसका भी होए मोख
0: संत का दुखी सदा प्रवित
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित
0: संत के दुखी को डान लगे
1: संत के दुखी को सब त्याग
0: संत का दुखी महा अहंकारी
1: संत का दुखी सदा बेकारी
0: संत का दुखी जन्म मरे
1: संत की दुख न सुख ते तरे
0: संत के दुखी को ना ही ठाऊ
1: नानक संत भावे ता लय मिलाए
0: संत का दुखी अद भी जिते टूटे
1: संत का दुखी कित काज न पहुंचे
0: संत के दुखी को उद्यान प्रमाइये
1: संत का दुखी कुंजड़ पाइये
0: संत का दुखी अंतर ते सोथा
1: जो सास बिना मृत की लोथा
0: संत के दुखी की जड़ किस नाही
1: अपन बीजा पे ही खाहे
0: संत के दुखी को अवर न रख न हार
1: नानक संत भावे ता लय उबार
0: संत का दुखी इउ बिल लाए
1: ज्यों जल बे होन मछली तड़फड़ाए
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे
1: जो पावक ईंधन नहीं त्रापे
0: संत का दुखी छुटे अकेला
1: ज्यों बवार तिल खेत माहे दुहेला
0: संत का दुखी धर्म ते रहत
1: संत का दुखी सत मिथ्या कहत
0: कीर्तन निंदक का तुर ही पया
1: नानक जो तिस भावे सोई थिया
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए
0: संत का दुखी सदा सहकाइय
1: संत का दुखी ना मरे ना जिवाइय
0: संत के दुखी की पूजा न आसा
1: संत का दुखी उठ चले निराशा
0: संत के दुख न दृष्टि कोई
1: जैसा भावे तैसा कोई होए
0: पया कीर्तन मिटे कोई
1: नानक जाने सच्चा सोए
0: सब कर तिसकी हो करने हार
1: सदा सदा तिसको नमस्कार
0: रब की उसत करहो दिन रात
1: तिसे त्याहो सास ग्रास
0: सब कछ वर्त तिसका किया
1: जैसा करे तैसा को थिया
0: अपना खेला करने हार
1: दूसर कौन कहे विचार
0: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
1: वडपा की नानक जन से श्लोक
0: तजो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राय
1: एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपदी।
0: मन उख की टीक बिरथी सब जान,
1: देवन पौ एक है भगवान,
0: जिसके दिया रह अगाहे,
1: और न तृष्णा लागे आए,
0: मारे राखे एको आप,
1: नानक कह कृष्णा ही हाथ,
0: जिसका हुक्म भू सुख होए,
1: जिसका नाम रख कंठ परोए,
0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए,
1: नानक बिघन न लागे कोए,
0: उसत मन में कर निरंकार,
1: कर मन मेरे सत व्यवहार,
0: निर्मल रसना अमृत पियो,
1: सदा सहेला कर ले जियो,
0: नैनो भेख ठाकुर का रंग,
1: सह संग बिन सह सब संग,
0: चरण चलो मार्ग गोविंद,
1: मिटे पाप जपिए हर बिंद,
0: कर हर कर्म श्रवण हर कथा,
1: अदर ज्ञान नानक उज्जल मथा,
0: बड़ भागी ते जन जग माहे,
1: सदा सदा हर के गुण गाहे,
0: राम नाम जो करे विचार,
1: शीतल मंतकनी संसार,
0: मन तन मुख बोले हर मुखी,
1: सदा सदा जानो ते सुखी,
0: एको एक एक पछाने,
1: एतुत कियो सोजी जाने,
0: नाम संग जिसका मन मानिया,
1: नानक तने निरंजन जाने,
0: गुर प्रसाद अपने आप सुजे,
1: जिसकी जानो तृष्णा बुझे,
0: सात संग हर हर जस कहत,
1: सर्व रोग त्यो हर जन रहत,
0: आन दिन कीर्तन केवल बखियान,
1: मैं सोई निर्वाण,
0: एक ऊपर जिस जन की आशा,
1: जिसकी कटिए जम की फसा,
0: पार ब्रह्म की जिस मन भूख,
1: नानक दसन लागे दुख,
0: जिसको हर ब्रह्म मन चिते आवे,
1: सो संत सोहेला नहीं बुलावे,
0: जिस प्रभु अपना कृपा करे,
1: सो सेवक को किसते डरे,
0: जैसा सत ऐसा दृष्ट आया,
1: अपने कार्य में आप समाया,
0: सोधत सोधत सोधत सीजया,
1: प्रसाद तत् सब पूजया,
0: जब देखो तब सब शमूल,
1: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल,
0: मैं किस जन मैं किस मरे,
1: अपने चलते आप ही करे,
0: आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट,
1: आज्ञाकारी तारी सब सृष्टि,
0: आपे आप सगल में आप,
1: अनजुग त्रच था व्यथा,
0: अवनाशी नाही किस खंड,
1: धारण धार रहे ब्रह्मांड,
0: लख पे पुरख प्रताप,
1: आप जपाए था नानक जाप,
0: जिन प्रभ जाता सो सो बावंत,
1: सगल संसार उदरे तन मंत,
0: प्रभ के सेवक सगल उदारन,
1: प्रभ के सेवक दुख विसारन,
0: आपे मेल लई कृपाल,
1: गुर का शब्द जप भय निहाल,
0: उनकी सेवा सो ही लागे,
1: जिसनो कृपा करे बट भागे,
0: नाम जपत पावे विश्राम,
1: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान,
0: जो किस करे सो प्रभ के रंग,
1: सदा सदा बसै हर संग,
0: सह सुपाई हो वह सो हो,
1: करने हार पछाने सोए,
0: प्रभ का किया जन मीठ लगाना,
1: जैसा सत ऐसा दृष्टाना,
0: जिसकी उपजे तिस माही समाई,
1: सुख निदान उन्हों बने।

0: अष्टपदी
1: टूटी गांडन हर गोपाल
0: सर्व जिया आपे पतपाल
1: सगल की चिंता जिस मन माहे
0: जिसते व्रता कोई नाहे
1: रे मन मेरे सदा हर जाप
0: अवनासी प्रभ आपे आप
1: अपन की या कछु न होए
0: जिसो प्राणी लोचे कोई
1: जिस बिन नाही तेरे किस काम
0: रत नानक जापे हर नाम
1: रूपवंत होए नाही मोह है
0: रब की जोत सगल घट सो है
1: धनवंता होए क्या को भर पै
0: जा सब कुछ किसका दिया धर पै
1: हाथ सूरा जे को कहावे
0: रब की कला बिना कहता वे
1: जे को होए वह दातार
0: इस देन हार जाने गा वार
1: जिस गुर प्रसाद टूटे हों रोग
0: नानक सोजन सदाया रोग
1: ज्यो मंदिर को थामे थमन
0: ज्यो गुर का शब्द मने अस्थमन
1: ज्यो पाखान नाम जड़ तरे
0: प्राणी गुर चरण रक्त निस्तर
1: ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश
0: दर्शन देख मन होए विकास
1: ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावे
0: ज्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे
1: तिन संतन की बांछो धूर
0: नानक की हर लोचा पूर
1: मन मूर्ख काहे बिरलाई है
0: गुर लिखे का लिखिया पाई है
1: दुख सुख प्रभ देव नहार
0: अवर त्याग दूत सहज तार
1: जो कछ करे सोई सुख मान
0: ला काहे प्रे अजान
1: कौन बसते आई तेरे संग
0: डॉक्टर रहो रस लोभी पतंग
1: राम नाम जब हृदय माही
0: नानक पद से ती कर जाहे
1: जिस वक्र को लैन तू आया
0: राम नाम संतन कर पाया
1: आज भमान ले हो मन मोल
0: राम नाम हृदय में तो
1: लाद खेप संता संग चाल
0: अवर त्याग बिखिया जंजाल
1: धन धन कहे सब कोई
0: मुखो जलहर दर कह सोए
1: एहो वापार बिरला वापार है
0: नानक ताकै सतबर हार है
1: तेरन साध के धोई धोई पियो
0: अर्प साध को अपना जियो
1: साध की धूर करो इशनान
0: साध ऊपर जाइए कुर्बान
1: साध सेवा वट भागी पाई है
0: साध संग हर कीर्तन गाई है
1: अंत बेगन ते साधु राख है
0: अर्पण गाय अमर तरस चख है
1: ओट गई संत हंदर आया
0: सर्व सुख नानक ते पाया
1: मृतक को जी वालन हार
0: भूखे कौ दे बते आधार
1: सर्व निधान जा की दृष्टि माहे
0: गुरु लिखे का लहना पाए
1: सब किस तिसका करना जोग
0: जिस बिन दूसर हवा न होग
1: जप जा सदा सदा दिन रैणी
0: शक्ति उच निर्मल ए करनी
1: हर कृपा जिसको नाम दिया
0: नानक सोजन निर्मल थिया
1: जाके मन गुर की प्रतीत
0: जिन आवे हर प्रभु चीत
1: भक्त भक्त सुनिया तिह लोए
0: जाके हृदय एको होए
1: सच करनी सचता की रहत
0: सच हृदय सतमुख कहत
1: साची दृष्ट साचा आकार
0: सच वर तैसा चापा सार
1: पार ब्रह्म जिन सच कर जाता
0: नानक सो जन सच समाता श्लोक
1: रूप नरेख नरंग किछ त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न
0: सब बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न अष्टपदी
1: अवनासी प्रभ मन मह राख
0: मानो की तू प्रीत त्याग
1: तेसे परे नाहीं किछ होए
0: सब निरंतर एको सोए
1: आपे बिना आपे दाना
0: गैर गंभीर गहीर सजाना
1: पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद
0: कृपा ध्यान दयाल बख्शंद
1: साथ तेरे की चरनी पाऊं
0: नानक कै मन हे नराव
1: मनसा पूर्ण सरना जोग
0: कर पाया सोई हो
1: हरन भरन जा का नेत्र फोर
0: इसका मंत्र न जाने होर
1: हंद रूप मंगल सद जा कै
0: सर्व थोक सुनिए करता कै
1: राज महराज जोग मह जोगी
0: तप मत पीसर कृष्ण मह भोगी
1: त्याई त्याई भक्ता सुख पाया
0: नानक दस पुरख का कने अंत न पाया
1: जाकी लीला कीमत नाही
0: सगल देव हार अवगाहे
1: पिता का जन्म के जाने पूत
0: सगल परोही अपने सूत
1: सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे
0: जनदास नाम ते आवे से
1: देह गुण में जाको परमाए
0: जन्म रेफरे आवे जाए
1: ऊंच नीच तिसके स्थान
0: जैसा जनावे तैसा नानक जान
1: नाना रूप नाना जाके रंग
0: नाना पेख करे एक रंग
1: नाना विद किनो विसार
0: रब बनासी एक अंकार
1: नाना चलित करे किन माही
0: पूर रहे पूर्ण सब ठाए
1: नाना विद कर बंत बनाई
0: अपनी कीमत आपे पाई
1: सब कर तिसके सब तिसके ठाऊ
0: जब जब जीवे नानक हर नाम
1: नाम के तारे सगले जंत
0: नाम के तारे खंड ब्रह्मंड
1: नाम के तारे सिमरत वेद पुराण
0: नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान
1: नाम के तारे आकाश पाताल
0: नाम के तारे सगले आकार
1: नाम के तारे पुरिया सब भवन
0: नाम के संग उतरे सुन श्रवण
1: कर कृपा जिस अपने नाम लाए
0: नानक चौथे पद में सो जनगत पाए
1: रूप सत जाका सत स्थान
0: सत के वर प्रधान
1: करतूत सत सत जाकी वाणी
0: सत पुरुष सब माहे समानी
1: सत कर्म जाकी रचना सत
0: मूल सत सत उत्पत्त
1: सत करणी निर्मल निर्मली
0: जिसे बुझाए तिसे सब भली
1: सत नाम प्रभ का सुखदाई
0: विश्वास सत नाम गुर ते पाई
1: सत वचन साधु उपदेश
0: सत ते जन जाके हृदय प्रवेश
1: सत नित बुझे जे कोई
0: नाम जबरता की गत होए
1: आप सत की आ सब सत
0: आपे जाने अपने मित गत
1: जिसकी सिफत सो करना हार
0: अवर न बूझ करत विचार
1: करते की मित न जाने किया
0: नानक जोत स्वभाव है सो वर्तिया
1: दुश्मन बिसम भय बिस्माद
0: जिन बुझिया तिसे आया स्वाद
1: करके रंग रात जन रहे
0: गुर के वचन पदार्थ लहे
1: होए दाते दुख काटन हार
0: जाके संगत रह संसार
1: जन का सेव सो वट भागी
0: जन के संग एक लिव लागी
1: गुण गोविंद कीर्तन जन गावे
0: गुर प्रसाद नानक फल पावे श्लोक
1: आद सच जुगाद सच
0: पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी
1: चरण सत सत प्रसन्न हार
0: सत सत ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ,
1: ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਇਕ ਨਿਹਾਰ,
0: ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਧਿਆਨ ਹਾਰ,
1: ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਧਾਰੀ,
0: ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ,
1: ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭਤਾ,
0: ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਣਤਾ,
1: ਬੁਜਨ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ,
0: ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ,
1: ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਨ ਮਾਨਿਆ,
0: ਨਾਨਕ ਰਾਵਣ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਣਿਆ,
1: ਜਾਂ ਕਰ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ,
0: ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ,
1: ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ,
0: ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ,
1: ਬਸ ਮਾਹੀ ਲੈ ਬਸ ਗਡਾਈ,
0: ਤਾਕੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ,
1: ਬੂਜੈ ਬੂਜਨ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ,
0: ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ,
1: ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ,
0: ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ,
1: ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ,
0: ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ,
1: ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ,
0: ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ,
1: ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਣ ਹਾਰਾ,
0: ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ,
1: ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੈ,
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਮਾਰੈ,
1: ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ,
0: ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ,
1: ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇਵ ਡਾਈ,
0: ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ,
1: ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਤ ਰਾਖੈ,
0: ਆਕੀ ਕਦਮਿਤ ਕੋਈ ਨ ਲਾਖੈ,
1: ਆਪਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਕੋਊ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ,
0: ਆਪਕੇ ਸੇਵਕ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ,
1: ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ,
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਾ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ,
1: ਨੀਕੀ ਕੀਰੀ ਮਹਿ ਕਰ ਰਾਖੈ,
0: ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ,
1: ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸਨ ਕਾਢਤੇ ਆਪ,
0: ਤਾਕੋ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ,
1: ਮਾਨਸ ਯਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਂਤ,
0: ਜਿਸਕੇ ਕਰਤਵ ਬ੍ਰਥੇ ਜਾਤ,
1: ਮਾਰੈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਹਵਰ ਨਾ ਕੋਈ,
0: ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ,
1: ਕਾਹੀ ਸੋਚ ਕਰ ਹਿਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ,
0: ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਲੱਖ ਵਡਾਣੀ,
1: ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀ ਹੈ,
0: ਕੀ ਅਮਰਤੇ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀ ਹੈ,
1: ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ,
0: ਜਿਸਕੇ ਸ਼ੇਵਰ ਨਾਹੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ,
1: ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ,
0: ਨਾਮੋ ਸੁਖਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ,
1: ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ,
0: ਮੰਤਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ,
1: ਊਠ ਬੈਠ ਸੋਭਤ ਨਾਮ,
0: ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ,
1: ਬੋਲੋ ਜਸ ਦੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ,
0: ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤ,
1: ਕਰੇ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕਹਿ ਚਾਈ,
0: ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਈ,
1: ਜੋ ਹੋਵਾ ਹੋ ਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ,
0: ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ,
1: ਇਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ,
0: ਇਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਏਕ ਨ ਜਾਣੋ,
1: ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਅਸੇ ਹਜੂਰੇ,
0: ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੇ,
1: ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇਹ,
0: ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇ,
1: ਜਿਨ ਜਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ,
0: ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ,
1: ਕਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ,
0: ਇਸ ਕੈ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ,
1: ਅਵਰ ਸਿਆਨਕ ਸਗਲੀ ਛਾੜ,
0: ਜਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ,
1: ਆਪ ਨ ਜਾਣ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ,
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ,
1: ਸਲੋਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤ ਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ,
0: ਜਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖੀ ਉਦਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ,
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ,
0: ਸੇਵਕ ਔਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ,
1: ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ,
0: ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ,
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਟੈ,
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ,
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ,
0: ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ,
1: ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ,
0: ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ,
1: ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੈ,
0: ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹੈ,
1: ਆਪ ਉਸਕੋ ਕਰ ਕਸ਼ ਨਾ ਜਨਾਵੈ,
0: ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ,
1: ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ,
0: ਸੇਵਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ,
1: ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਕਾਮੀ,
0: ਜਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵਾਮੀ,
1: ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ,
0: ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤਲੇ,
1: ਜਿਸ ਵਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ,
0: ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ,
1: ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰਨਾਉ,
0: ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾ,
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ,
0: ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ,
1: ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ,
0: ਏਕੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ,
1: ਸਹਿ ਸਿਆਨ ਭਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਐ,
0: ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰਵਟ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ,
1: ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਪੁਨੀਤ,
0: ਦਰਸ਼ਤ ਚਰਨਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ,
1: ਭੇਟ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ,
0: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੈ,
1: ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ,
0: ਮਨ ਸੰਤੋਖਾ ਤੰਪਤ ਜਾਣੈ,
1: ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਅਕਿਓਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ,
0: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਭੇਖੇ ਹੋਏ ਸੰਤ,
1: ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ,
0: ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ,
1: ਜੇ ਵਾਏ ਕੋ ਸਤ ਅਨੇਕ,
0: ਸਤਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਵੇਕ,
1: ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨ ਪਹੁੰਚਤ ਪ੍ਰਾਣੀ,
0: ਅਗਮਾ ਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ,
1: ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ,
0: ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ,
1: ਅਨਕ ਭਗਤ ਬੰਧਨ ਨਿਤ ਕਰੇ,
0: ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰੈ,
1: ਸਤ ਬਲਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਪਣੇ,
0: ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜਪਨੇ,
1: ਇਹੋ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਜਨ ਕੋਏ,
0: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ,
1: ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼,
0: ਜਾਕੇ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟੇ ਗੁਣਤਾਸ,
1: ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇ,
0: ਸੱਚ ਉਪਦੇਸੇ ਵਕੋ ਦੇ,
1: ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗ ਨ ਲੇਪ,
0: ਮਨ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਹਰ ਹਰ ਏਕ,
1: ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ,
0: ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਦੁਖਤਾਂ ਤੇ ਨਾਸੇ,
1: ਸਤ ਮਾਹੀ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ,
0: ਅਣਦ ਭਇਆ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਭਾਈ,
1: ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ,
0: ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ,
1: ਭਉ ਚੁਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਵਸੈ,
0: ਸਗਲ ਵਿਆਧ ਮਨ ਤੇ ਕਹਿ ਨਸੇ,
1: ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਧਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ,
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ,
1: ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੁਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਮਨ,
0: ਸੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਦਾ ਸਰਵਣ,
1: ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੋਈ,
0: ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ,
1: ਆਪਣੇ ਚਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਏ,
0: ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ,
1: ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ,
0: ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ,
1: ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ,
0: ਭੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧਕ ਸੰਗ,
1: ਰਾਜ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ,
0: ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਹਾਰੀ,
1: ਸਲੋਕ ਸਾਥ ਨ ਚੱਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ,
0: ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨ, ਨਾਨਕ ਹੋ ਤਨ ਸਾਰ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ।
1: संत जना मिल करो विचार,
0: एक सिमरन नाम आधार,
1: अब रूपा स्वामीत पसारो,
0: शरण कमल रिद मैं उरतार,
1: कर्म काम सो प्राप्त समर्थ,
0: निरकर गहो नाम हर बात,
1: एव तान संचो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार कुंट उठता वही,
0: सो तन हर से बाते पावे,
1: जिस सुख को नित बांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस शोभा को करहे भली करनी,
0: सासो बापर हर की सरनी,
1: अन को पावी रोग न जाए,
0: रोग मिटै हर अवखत लाए,
1: सर्व निदान मैं हर नाम निदान,
0: जप नानक दरगह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: दैत स्थापते आ बैठाए,
1: ताको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसे हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाओ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: पाव बिन सह पूर्ण होए आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: हित कर जाए बसे अविनाशी,
0: तो नानक काटी जम फासी,
1: सत विचार कहे जन साचा,
0: जन्म मरे सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटे प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: यो रत्न जन्म का होए उधार,
0: हर सिमर पुराणे आधार,
1: अनको पाव न छूटन हारे,
0: शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करो मन लाए,
0: मन वंशित नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थे रह तना,
0: गाल पटावे मूर्ख मना,
1: सोत मीत कुटंब हर बनेता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: आस स्थिर रथ सवारी,
0: झूठा डंप झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुर की मातु ले आने,
0: भक्त बिना पौ डूबे सियाने,
1: भक्त की भगत करो मन मीत,
0: निर्मल होए तमारो चीत,
1: चरण कमल रखो मन माही,
0: जन्म जन्म के किल बिख जाहि,
1: आप जपो अवरा नाम जपाव हो,
0: संत कहत रहत गत पाव हो,
1: सार पूर सत हर को नाओ,
0: सहस भाई नानक गुण गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतर समैल,
0: जनस दाय हो मैं बिख फैल,
1: ओहे अचिंत बसै सुख नाल,
0: सात ग्रासर नाम समाल,
1: छाड़ सियान सगली मना,
0: सात संग पाव है सस्तना,
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार,
0: हम सफदर गय जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: तो नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जाप एको सलाह है,
0: एक समर एको मन आहे,
1: एक उसके गुण गाओ अनंत,
0: मंतन जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे उप्रभ्य,
1: अंत विस्तार एक ते भये,
0: एक आराध प्रास्त गए,
1: मंतन अंतर एक प्रभ राता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए, अष्टपदी
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर,
1: सदा सदा प्रभ की गुण गावो,
0: सास सास प्रभ तुम्हें ध्यावो,
1: चरण कमल स्यों लागे प्रीत,
0: करो प्रभु की नित नीत,
1: एक ओट एक को आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभु सार,
1: प्रभु की दृष्ट महा सुख होए,
0: रस पावे बिरला कोई,
1: जिन चाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपार परे प्रेम रस रंग,
0: जय चाहो साधक संग,
1: परे सरन आन सत्याग,
0: अंतर प्रकाश अंधन निवलाग,
1: बड़ भागी जप्या प्रभु सोए,
0: नानक नावर ते सुख होए,
1: सेवक की मनसा पूरी पई,
0: सतगुरु दे निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभु होए दयाल,
0: सेवक की नो सदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया,
1: पुन्नी सरदा सब पूरी,
0: अब रहे सत्संग हजूरी,
1: जिसका साथ न लिया मिलाए,
0: नानक भक्ति नाम समाये,
1: सोक्यों बिसरे जे काल न पाने,
0: सोक्यों बिसरे जे किया जाने,
1: सोक्यों बिसरे जे सब कुछ दिया,
0: सोक्यों बिसरे जे जीवन जिया,
1: सोक्यों बिसरे जे अग्न मह राखै,
0: गुर प्रसाद को बिरला लख है,
1: सोक्यों बिसरे जे बिख ते काट है,
0: जनो जनो का टूटा गंड है,
1: गुर पूरा तत ए है बुझाया,
0: प्रभ अपना नानक जन त्याया,
1: साजन संत करो ए काम,
0: आन त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अबरे नाम जपावो,
1: भगत भाई तरी है संसार,
0: भक्ति तन होशी सार,
1: सर्व कल्याण सूप निध नाम,
0: मूढ़ जात पाए विश्राम,
1: सगल दुख का होवत नास,
0: नानक नाम जपो गुण पास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ,
0: मंत्र अंतर ही स्वाव,
1: नेत्रों देख दर सुख होए,
0: मन बिक सह साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: अल्लाह को पावे संग,
1: एक बस दीजे करमया,
0: गुरु प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जाए,
0: नानक रहया सर्व समाए,
1: रब बख्शंत दीन दयाल,
0: भगत बशल सदा कृपाल,
1: नाथ नाथ गोविंद गोपाल,
0: सर्व घटा कृत प्रतपाल,
1: हाथ पुरख कारण करतार,
0: जना के प्राण आधार,
1: जो जो जपै सो हई पुनीत,
0: भगत पाए लावे मन हीत,
1: हम निर्गुण यार नीच अजान,
0: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान,
1: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
0: एक निमक हर के गुण गाए,
1: अनक राज भोग बड़े आई,
0: हर के नाम की कथा मन पाई,
1: वो भोजन का प्रसंगीत,
0: रसना जपती हर हर नीत,
1: भली सो करनी शोभा धनवंत,
0: हृदय बसे पूर्ण गुरमंत,
1: साध संत प्रभ देहो निवास,
0: सर्व सुख नानक परगास, श्लोक
1: स्वर्गुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप,
0: आपन किया नानका, आप ही फिर जाप, अष्टपदी
1: जब अकार एहो कछ ना दिसटेता,
0: आपन तब कहते होता
1: जब धारी अपन सुन समात
0: बैर विरोध के संग कमात
1: जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत
0: जब हरक सो को कसै व्यापत
1: जब अपन आप आप आर ब्रह्म
0: मोह कहा किस होवत भरम
1: अपन खेल आप वर्ती जा
0: नानक करने हार न दूजा
1: जब होवत प्रभ केवल धनी
0: संबंध मुगत को किस को गनी
1: जब एक ही हर अगम अपार
0: जब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार
1: जब निर्गुण प्रभ सहज सुपाई
0: जब शिव शक्त कहो हगत ठाए
1: जब आप ही आप अपनी ज्योत धरै
0: जब कवन न डर कवन कत डरै
1: अपन चलित आप करने हार
0: नानक ठाकुर एक में पार
1: अवनासी सुख अपन आसन
0: तै जन्म मरण कहो कहा विनाशन
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए
0: तब जम की त्रास कहो किस होए
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका
0: तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा
1: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे
1: अपन आप ही अचर जा
0: नानक अपन रूप आप ही उपर जा
1: जय निर्मल पुरख पत होता
0: जय बिन मैल कहो क्या तोता
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण
0: जय कौन कमान कौन अपमान
1: जय स्वरूप केवल जगदीश
0: जय शब्द चित्र लगत पौ कीस
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
0: जय किसे भूख कवन तृप्तावे
1: करन करावन करने हार
0: नानक करते का नहि समार
1: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई
0: तब कवन माए बाप मित्र सत भाई
1: जय सर्व कला आपे प्रवीण
0: जय वेद देव कहा को चीन
1: जब अपन आप उतार है
0: शगन अपशगन कहा विचार है
1: जय अपन ऊंच अपन आप नेरा
0: जय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा
1: विस्मन विस्म रहे विस्माद
0: नानक अपनी गत जन हो
1: जय छल अशेद अभेद समाया
0: वहाँ कसे व्याप्त माया
1: आप उसको आप ही आदेश
0: गुण का ना ही प्रवेश
1: जय एक ही एक एक भगवंता
0: जय कौन अचिंत किस लागे चिंता
1: जय अपन आप पतियारा
0: जय कौन कथा कौन सुनने हारा
1: बहु व्यंत ऊंच ते ऊंचा
0: नानक आप उसको आप पहुँचा
1: जय आप रचियो प्रपंच आकार
0: गुण मैं की नो विस्तार
1: पाप पुन तह पई कहावत
0: ओ नरक को स्वर्ग विशाल
1: काल जाल माया जंजाल
0: मैं मोह परम पै भार
1: दुख सुख मान अपमान
0: अनक प्रकार की उपख्यान
1: अपन खेल आप कर देखे
0: खेल संकोच तो नानक एक
1: जय अवगत भगत है आप
0: जय पसरे पसार संत प्रताप
1: तू पाप का आप ही धनी
0: उनकी शोभा उन्हों बनी
1: आप ही कौतुक करे अनंत जोज
0: आप ही रस भोग निर्जोग
1: जिस भावे तिस आपन नाई लावे
0: जिस भावे तिस खेल खिलावे
1: बेशुमार अथाह अगंत अतुल
0: ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले श्लोक
1: जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तन हार
0: नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार अष्टपदी
1: आप कथा आप सुनने हार
0: आप एक आप विस्तार
1: जंत पावे तां श्रेष्ठ उपाय
0: अपने भाने लय समाये
1: तुम ते भिन्न नहीं किश होए
0: अपन सूत सब जगत परोए
1: जा को प्राप्ति आप बुझाए
0: सच नाम सोई जन पाए
1: सो समदर्शी तत् का बेता
0: नानक सगल सृष्ट का जेता
1: जी जंत्र सप्तां के हाथ
0: दीन दयाल अनाथ को नाथ
1: जिस राख है तिसको न मारे
0: सो मुह आज समनो बिसारे
1: इस तक अवर कहां को जाए
0: सब सिर एक निरंजन राय
1: की जुक्त जा के सब हाथ
0: अंतर बाहर जानो साथ
1: गुण निधान बेअंत अपार
0: नानक दास सदा बलहार
1: पूर्ण पूर रहे दयाल
0: सब पर होवत कृपा
1: अपने कर्तव्य जाने आप
0: अंतर जामी रहो व्याप
1: प्रत पाले जी अनुभव भांत
0: जो जो रचियो सो तिसे त्यात
1: जिस भावे तिस लय मिलाए
0: भगत करे हर के गुण गाए
1: मन अंतर विश्वास कर मानिया
0: कर्म हार नानक एक जाने
1: जन लागा हर एक कह नाई
0: जिसकी आस न वृत्ति जाए
1: सेवक को सेवा बन आई
0: हुकम बोझ परम पद पाई
1: इससे ऊपर नहीं भी
0: जाके मन बसया निरंकार
1: बंधन तोर भय निर्वैर
0: हर दिन पूजे गुर के पैर
1: ए लोक सुखी परलोक सुहेले
0: नानक हर प्रभ आपे मेले
1: साथ संग मिल करो आनंद
0: उनका वो प्रभ परमानंद
1: राम नाम तत् करो विचार
0: दुर्लभ देखा करो उदार
1: अमृत वचन हर के गुण गाओ
0: प्राण तरन का यह स्वभाव
1: आठ पैर प्रभ देखो नेरा
0: हटिया ज्ञान बिन सह अंधेरा
1: सुख उपदेश हृदय बसावो
0: मन इच्छे नानक फल पावो
1: हलत पलत दोए लेहो सवार
0: राम नाम अंतर उरतार
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया
0: मन बसे ते साच परीखिया
1: मन तर नाम जपो लिबलाए
0: दुख दर्द मन ते पाओ जाए
1: सच व्यापार करो व्यापारी
0: दरगे निधय खेप तुम्हारी
1: एक टेक रखो मन माही
0: नानक पहुर न आवे जाहे
1: इससे दूर कहां को जाए
0: उबरे राखन हार ते आए
1: निर भव जपै सकल भव मिटै
0: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै
1: जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख
0: नाम जपत मन होवत सुख
1: चिंता जाई मिटै अहंकार
0: जिस जन को कोई न पहुंचन हार
1: सिर ऊपर ठाड़ा गुरसूरा
0: नानक ताके कार्ज पूरा
1: मत पूरी अमृत जाकी
0: दर्शन पेखत उदरत सृष्ट
1: चरण कमल जाके अनूप
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप
1: भान सेवा सेवक परवान
0: अंतर जामी पुरख प्रधान
1: जिस मन बसे सुहोत निहाल
0: ताके निकट न आवत काल
1: अमर भये अमरा पद पाया
0: साध संग नानक हर त्याया श्लोक
1: ज्ञान निरंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश
0: हर कृपा ते संत पेटिया ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ
0: ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਏਕ ਘਟ ਮਾਹੀ
0: ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ
1: ਨੌ ਨਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ
0: ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ
1: ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਅਨਹਦ ਤਹਿਨਾਦ
0: ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈਐ ਚਰਤ ਬਿਸਮਾਦ
1: ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਦਿਨ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ
1: ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ
0: ਘਟ ਘਟ ਪਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ
1: ਧਰਨ ਮਾਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ
0: ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ
1: ਅੰਤਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ
1: ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਤਰ ਮਾਹੀ
0: ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸੈ ਸਮਾਹੀ
1: ਇਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਉ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਉ
1: ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮਹਿ ਦੇਖ
0: ਸਸਿਆ ਸੂਰ ਨਖਤਰੇ ਮੈਂ ਏਕ
1: ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੈ
0: ਆਪ ਡੋਲ ਨਾ ਕਬ ਹੁਣ ਡੋਲੈ
1: ਸਰਬ ਕਲਾਕਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ
0: ਬੋਲ ਨਾ ਪਾਈਐ ਗੁਣੈ ਅਮੋਲ
1: ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਗੀ ਜੋਤ
0: ਧਾਰ ਰਹਿਓ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਵੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੇ ਸ਼ੁਭ ਵਚਨ
0: ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ
1: ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ
0: ਸਤ ਵਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ
1: ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ
0: ਕਰਨਕ ਰਾਵਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ
1: ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਪੀਓ ਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ
1: ਇਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਾਰ
0: ਇਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ
1: ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹਿ ਜਾਏ
0: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ
1: ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ
0: ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ
1: ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ
1: ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ
0: ਸਰਬ ਨੈਣੇ ਆਪ ਖਨਹਾਰਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਕਾ ਤਨਾ
0: ਆਪਣ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ
1: ਆਵਨ ਜਾਨ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ
1: ਸਭ ਕੈ ਮਤ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹਿ
0: ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੈ
1: ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਜਾ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਸਮਾਈ
1: ਜਿਸੇ ਹੋਈ ਸੋ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ
0: ਉਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੈ ਕਛ ਕਰਾ
1: ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਅਤ ਨੀਕੀ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ
1: ਆਪ ਸਾਜ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ
0: ਪੋਤ ਪੋਤੇ ਆਪਣ ਸੰਗ ਰਾਚ
1: ਆਕੀ ਗਰਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ
0: ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ
1: ਇਸ ਕਾ ਕੀ ਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਨ
1: ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੋਹੇ
0: ਆਪ ਮਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ
0: ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦਾ ਭਗਵੰਤ
1: ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ
1: ਜਾਣਿਆ ਮਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ
0: ਜਨ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਵੈ ਨਾਮ
1: ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ
0: ਨਾਨਕ

विभूते समस्त स्वरूपे कुकर्मं प्रणासि स्वधर्मं विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासि करी मुलुक निंदा समस्त निवासी अजय भूते अजय भगनी में हरियां करियां करी मल रही में चत

पौड़ी सच्चा साहिब एक तुझे ने सचो सच वरताया, जिस तू दे तिस मिला सस्ता तिनी सच कमाया, सतगुरु मिले सच पाया, जिनके हृदय सच वसाया, मोरख सच ना जाने ने मर्म

कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसन हार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पन्नन हार कूड़ काया कूड़ कप

श्री नामदेव जी महाराज के अंदर भावना प्रधान है। दरअसल भगत नामदेव जी महाराज भावना प्रधान पुरुष ने, ते जिथे भावना प्रधान है, जज्बे प्रधान ने, बस ओही भगत है। दो तरह के मनुख ने, कोई अकल दे तल ते जीवंदा है, कोई हिरदे दे तल ते जीवंदा है, कोई बौद्धिक तल ते जीवंदा है, कोई दिल दे तल ते जीवंदा है। जीवन दे ए दो ढंग ने। जो बौद्धिक तल ते जी रहा है उस दे अंदर विचार प्रधान होवेगी, जो हिरदे दे तल ते जी रहा है उत्थे भाव प्रधान होवेगा, पर जो ना बौद्धिक तल ते जी रहा है ते ना हिरदे दे तल ते जी रहा है, वो मनुष्य ही नहीं है, वो पशु है। पशु इना दोहां थल्लां तो थल्ले ही जीवंदा है। इत्थे प्रश्न खड़ा होंदा है, भाव प्रधान है कि विचार प्रधान है? दरअसल विचार नाल वस्तु नू समझना है, हस्ती नू समझना है, और भाव नाल हस्ती नाल जुड़ना है, वस्तु नाल जुड़ना है। अगर भाव ना होए तो जुड़ नहीं सकांगे, विचार ना होए तो समझ नहीं सकांगे। जन्म तो मनुख भाव ही लेके आंदा है। इस तो एक गल स्पष्ट हो गई कि विचार नालों भाव दी आवश्यकता ज्यादा है, अधिक है। भाव प्रथम है, विचार बाद देच है। भाव करके एक मासूम बच्चा मां नाल संबंध जोड़दा है, पिता नाल संबंध जोड़दा है, भैणा नाल संबंध जोड़दा है, भरावां नाल संबंध जोड़दा है। अजे ते विचार दी दुनिया उत्थे आरंभ ही नहीं हुई, अजे ते भाव दी दुनिया। कहिंदे ने परमात्मा नू समझण दे विच ही ज्ञानियां दा समा लंघ जांदा है, और फिर भी पूरा समझना उसनू कठिन है। थोड़ा जिहा जो तू समझे है उन्हों हुण अपनी जिंदगी दे विच प्रयोग दे विच लिया, तो हुण जज्बा पैदा कर, भाव पैदा कर, श्रद्धा पैदा कर, ते उस नाल जुड़। जितना भी तू विचारेगा विचारां दी पहुंच उस प्रभु तक नहीं होवेगी। थोड़ी बहुत जो विचार दे राही तेनु झलक मिली है तो हुण जुड़न दी कोशिश कर, पर विचारां दी दुनिया जो बहुत अगे लंघ जाए, महान दार्शनिक हो जाए, महान फिलोसफर हो जाए, तो फिर उस लई जज्बियां नू पैदा करना बहुत कठिन हो जाता है। उर्दू दे अजीम शायर इकबाल दा ऐसा कहना है, तेरे सीने में दम है दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है, निकल जा अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है मंजिल नहीं है। ए बंदे अकल दी दुनिया तो अगे लंघ जा, जज्बियां दी दुनिया च पहुंच, वलवलियां दी दुनिया च पहुंच, भावना दी दुनिया च पहुंच। जे तू कोई रस लेना है, स्वाद लेना है, आनंद लेना है, हकीकत है अकल ते रस्ते दा दीव है, अकल ते रस्ते दा चानना है। ते हुण दीवे दी ही कोई परिक्रमा करदा रह जाए ते मंजिले मकसूद तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। आम आख्या जांदा है कई दफा अंधी श्रद्धा वाला भी भटकदा भटकदा पहुंच जांदा है, पर कई दफा विचारां दी परिक्रमा करन वाला विचारां दे विच ही फसा रह जांदा है, और ईश्वर तक पहुंचना उस लई औखा हो जांदा है। विचारक अपने विचारां दे विच ही कई दफा उलझ के जो है रह जांदा है। हजारों साल फिलोसफी की तना तनी रही, खुदा की बात जहां पे थी वहीं पे रही। आखिरे कितना भी खपिए, कितना भी विचारिए, ता भी विचारदियां विचारदियां पता चलदा है कि जिथों असी शुरू होई सी उत्थे ही खड़े, एक कदम भी अग्गे नहीं वधे। विचार विचार के जद ऐसा पता चले कि ओ साडे विचारां च नहीं आउंदा, ओ साडी सोच मंडल दे च नहीं आउंदा, ओ साडे बौद्धिक पकड़ दे च नहीं आउंदा, बस उसे क्षण चाहिदा है कि मनुख जज्बियां नू जन्म देवे, श्रद्धा नू जन्म देवे, विश्वास नू जन्म देवे, भावना नू जन्म देवे। तो भगत नामदेव जी महाराज भाव प्रधान पुरुष ने, और आप दे अंदर जदों थोड़ा जिहा भी भाव कमजोर होंदा है, थोड़ा जिहा भी प्रेम पिछे हटदा है, तां आप तड़प के कहंदे ने, मोहे लागती ताला बेली, बछरे बिन गाय अकेली, पानिया बिन मीन तलफे,
त्यों राम नाम बिन बापरो नामा। मैं ते तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च इंज जैसे पानी तो बिना मछली तड़पदी है जिन्हें गौ मां तो बिना उसका बछड़ा ओ तड़पदा है व्याकुल होंदा है पुकारदा है और उच्ची धुन नाल आवाज मारदा है हे प्रभु जद भी रंजक मात्र भी विछोड़ा होवे ते विछोड़ा की है जज्बियां दा कमजोर होना भावनावां दा कमजोर होना श्रद्धा दा छीण होना प्रेम दा थोड़ा जिहा बुझना बस उस दे नाल ही भगतां दे अंदर तड़पनी शुरू हो जांदी है। कारण कि प्रेम दी अधिकता भावना दी अधिकता श्रद्धा दी अधिकता आनंद नूं जन्म देंदी है रस नूं जन्म देंदी है। श्रद्धा घटी भावना घटी प्रेम घटिया रस घट जांदा है और बिल्कुल प्रेम नहीं बिल्कुल श्रद्धा नहीं बिल्कुल भावना नहीं तो देखिया गया बिल्कुल कथा कीर्तन विच रस नहीं रह जांदा बिल्कुल सत्संग विच रस नहीं रह जांदा। रस ते तां हुण बनेगा जे इस शब्द नाल कथा नाल कीर्तन नाल भावना जोड़ी है श्रद्धा जोड़ी है प्रेम जोड़ी है तो फिर रस दी गंगा वग तुरदी है और प्रेम मनुख नूं तृप्ति दे जांदा है। श्रद्धा भावना वाला मनुख अठे पैर तृप्त रहिंदा है शुकराने विच रहिंदा है जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाय। बौद्धिक तल ते जीण वाला बंदा ओ अक्सर गिलियां विच जीवदा हे प्रभु मैं इतना कीता ते प्राप्त की होया। बौद्धिक तल ते जीवण वाला मनुख अक्सर व्यापारी हो जांदा है तो दुनिया दे चोटी दे व्यापारी समझ लेने चाहिदे ने कि बौद्धिक तल ते जी रहे ने हिरदे दे तल ते नहीं ते दुनिया भर दे चोटी दे संत भगत उन्हां बारे कहना पएगा कि हिरदे दे तल ते जी रहे ने। बुद्धि दा प्रयोग करदे ने पर जीवन दा केंद्र हिरदा है। व्यापारी आम दुनियादार बंदा बौद्धिक तल ते जीवदा है विचारां दे तल ते जीवदा है श्रद्धा दा ते एवें कदी कदी अपनी गरज दी पूर्ति लई इस्तेमाल करदा है वरतों करदा है और इस तरीके नाल श्रद्धा भी अपवित्र हो जांदी है इस तरीके नाल ओ प्रेम भी धुंधला ते मैला हुंदा है। तो भगत नामदेव जी महाराज कहिंदे मैं ते इंज तड़पदा हे प्रभु तेरे विछोड़े च ते विछोड़ा उदों ही आउंदा है जद प्रेम मध्यम पैंदा है जद श्रद्धा छीन आउंदी है जद किधरे भावना नूं सट लगदी है जद किधरे विश्वास कमजोर आउंदा है उदों रस आनंद और सुकून भी एक पासे हो जांदा है। तो तड़पना ते कुदरती गल है शुरू होवेगी मोहे लागती ताला वेली बछरे बिन गाय अकेली। इस तरह भावपूर्वक जीवन बतीत करने वाले ने श्री नामदेव जी महाराज। सिर्फ आप दे अंदर भावना ही प्रधान नहीं बल्कि आप दे कोल विचार भी ने। ऐसा ना समझ लिया जाए कि भगत विचार बिल्कुल नहीं रखते नहीं उन्हां दे जीवन दा केंद्र ते श्रद्धा है उन्हां दे वर्तन वाले वेदे च विचार ने वस्तु नु समझ देने विचार नाल जुड़ देने भावना नाल परमात्मा दा थोड़ा बहुत बोध हासिल करके जैसे ओ प्रभु नाल भाव करके जुड़ देने तो परमात्मा दी बहुत वड्डी सूझ भगतां दे कोल आउंदी है। भावे आम दार्शनिक फिलोसफर बहुत कुछ पढ़िया लिखिया होवे तां वी उतनु सूझ नहीं रखेगा जितनी के भगत कोल है। एक अनपढ़ भगत कोल भी जितना परमात्मा दा ज्ञान है उतना चोटी दे पढ़े लिखे कोल भी नहीं होवेगा क्योंकि भगत ते जुड़े है भगत ने ते रस माने है भगत नूं ते उसदी होंद दा पूर्ण तौर ते पता है क्योंकि वह जुड़िया होया है। ते फिलोसफर दार्शनिक विचार वह ते सिर्फ विचार कर रहा है वह ते सिर्फ विचारां दे तल ते जी रहा है। इस वास्ते भगतां ने ऐसा आख्या भी है भगत सिरमौर श्री रविदास जी महाराज कहिंदे ने पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए अनुभव भाव न तरसे लोहा कंचन रिंड होए कैसे जो पारस नह परसे। श्री कबीर जी महाराज का भी ऐसा कहना है हर जस सुने न हर गुण गावे बातन ही असमान गिरावे ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए जो प्रभ किए भगत ते बाहज तिन ते सदा डराने रही। ए भगत विचारां दा ते सिर्फ प्रयोग करदे ने जीवदे ने हिरदे दे तल ते
भावना दे तल ते और जब भावना करके प्रभु नाल जुड़दे ने तो इना दे अंदरों जो गीत फुटदे ने जो ज्ञान फुटदा है वो इस तरह है जैसे कि पहाड़ा दे चों कोई झरना वग तुरिया है। श्री नामदेव जी महाराज दे विचार कितने बुलंद ने ज्ञान कितना महान है उना दे एक पावन पवित्र शब्द तो पता चलता है आम गाथा है और ओ भाई साहब भाई गुरुदास जी ने भी लिखी है कि कम किते प्यो चलिया नामदेव नू आख सुनाया। नामदेव नू सारी गल सुना दी ठाकुर दी सेवा करी घर विच मूर्तियां रखियां सन ते नामदेव नू कहंदे ने तू अमृत वेले उठना है तू ठाकरा नू इशनान कराण लई नदी तो मांझी हुई गागर विच जल भर के लियाउणा है पवित्र गागर विच जल भर के लियाउणा है ते ठाकरा नू इशनान कराणा है बगीचे विच जाके फुल तोड़ने ने बगिया विच जाके ते तोड़े हुए फुलां दी माला बना के ठाकर दे गल विच पाणी है। सिर्फ इतना ही नहीं घर विच जिहड़ी कपिला गऊ है उसका दुध चोके तू ठाकरा नू पिलाणा है। ये सारा कर्म जो उन्हां दा पिता नित करदा सी क्योंकि अज किधरे बाहर कम कार लई जा रहे है तो नामदेव नू कह दिता है जितने चिर तक मैं नाम आ ए सारा पूजा ए सारा अर्चा बंधन तू करना है। अमृत वेले बने हुए रोजाना दे सुभाव मुताबक आप उठे ने ब्रह्म मुहूर्त विच गागर पित्तल दी सिर ते रखी है नदी दे तट ते गए हैं गागर खूब मांझी है इशनान कीता है गागर नू भरे है ता आप दी दृष्टि जल जंतुआं ते पै गई मछलियां ते पै गई कुछ मेंढक सन उना ते पै गई कुछ कछुए सन उना ते पै गए आप दे अंदरों अमर गीत दा झरना इंज फुटिया आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकर कोई स्नान करो पर 42 लख जीव जल में होते बीठल भेला काहे करो। महाराष्ट्र देच प्रभु दा एक नाम बीठल भी है उसे दाई आप प्रयोग कर देने बीठल नाम दा एक मंदिर भी है बीठल मंदिर पंडरपुर देच और ओ तीरथ है और बहुत वड्डी पूर्णमाशी वाले दिन भीड़ रहती है। श्री नामदेव जी महाराज कहते हैं ऐ बीठल दस मैं की करा मैं पानी भरे है गागर मांझी है तेनू इशनान कराना है पर करा की पानी पवित्र नहीं है क्यों के 42 लख जूनिया ते आखर पानी दे च ने ते ओ सारा क्रिया कर्म पानी दे च ही कर दिया ने जन्म उना दा पानी दे च जीवन उना दा पानी दे च मरण उना दा पानी दे च सारी क्रिया पानी दे च और ए कुल मखलूक दा अद्धा हिस्सा पानी दे च है। पुराने शास्त्रां दी गणत दे मुताबिक 84 लख जोनिया ने जेदे चो 42 लख जल दे च ने 21 लख थल जंतु ने और 21 लख नभ जंतु ने आकाश दे च उड़न वाले। इस ढंग नाल 84 लख दी गिनती कीती गई है पर ए अद्धा जीव मंडल सारे दा सारा पानी दे च है। तो नामदेव कहंदे ने जद जीवन पानी दे च है जन्म पानी दे च है मरण पानी दे च है ए पानी पवित्र नहीं हो सकदा है ये ते अपवित्र है। हे प्रभु मैं इस जल दा तेनू इशनान नहीं कराना खाली गागर लेके आ गए और सोच रहे ने अज ठाकरा नू इशनान नहीं कराना पानी ते अपवित्र है ते ए ते ठाकरा नू अपवित्र करना होवेगा पर ए सोचनी आप दे अंदर जो फुटी है गालबन 11 साल दी उम्र विच छोटे ने बच्चे ने पिता बाहर जा रहे है ते पुत्र नू समझाया है ये सब कुछ तू रोज करना है पर इस मासूम बालक दे धार्मिक संस्कार इतने प्रबल ने ते बुद्धि इतनी उज्जवल है आप कहंदे ने नहीं ये जल ते अपवित्र है ते अपवित्र जल दे नाल हे प्रभु मैं तेनू इशनान करावा ते किवें करावा। छोटी जिही टोकरी लेके आप बगिया विच गए फुल तोड़न लगे ने ते फुल्लां दे उत्ते
मंडला रहे ने भौरे तितलियां। आप देख रहे हैं एकदम हैरान होए कि शहद दिया मक्खियां भी फुल्लां दे चों रस कढ़ रही हैं। आप कहने ने फुल भी पावन नहीं ने पवित्र नहीं ने इना दा रस ते भौरे ले जाने ने इना दे चो रस ते शहद दिया मक्खियां कढ़ के ले जानियां तितलियां कढ़ के ले जानियां लिहाजा इन्ना फुल्लां दी माला परो के हेठ आकर मैं तेरे गले किस तरह पावा जदके इन्ना फुल्लां दा इस्तेमाल भौरे पहले ही कर लेंदे ने तितलियां पहले ही कर लेंदियां ने शहद दियां मक्खियां पहले ही कर लेंदियां ने आ नीले फूल परोई ले माला ठाकर की हो पूज करो पर पहले बास लई है भौरे बीठल भेला काहे करो हो बहु इस तरह दा वाक भगत रविदास जी महाराज दा भी है। माई गोविंद पूजा कहां ले चराओ अवर न फूल अनूप न पाओ दूध ता बछरे थनो बिडारियो फूल भवर जल मीन बिगारियो हे प्रभु मैं किवें पानी नाल तैनू इशनान करावा उते जल अपवित्र कर दिता है मीन ने फूल ते अपवित्र कर दिते ने भौरिया ने तितलियां ने शहद दिया मक्खियां ने हुण आपनो ख्याल आया कि तीजा कम पिता ने सौंपिया सी कपिला गौ दा दुध ठाकरां नूं पिलाना तो अपनी माता नूं आख्या गौ चो दिओ दुध चाहीदा है। नामदेव दी माता ने गौ दा बछड़ा खोलिया बछड़ा थण चुंगण लग पिया ते नामदेव जी महाराज अपनी मां नूं कहिंदे ने पहले ए बछड़ा दुध पिएगा हां मेरे बच्चे पहले बछड़ा दुध पिएगा ता ही गऊ दुध देंदी है। तो आप कहने लगे मां मैनू ये दुध नहीं चाहिए इस दुध का भोग मैं ठाकरां नूं

पहले दूध बिटा रहे हो बछरे, बिठल भेला काहे करो। ए बिठल दस मैं की करा, दूध ते अपवित्र हो गया, इते पहले बछड़े ने पी ले, ते मैं ते तेनु पहले भोग लवाना सी, पर इते बछड़ा ही पहले भोग ला गया और थना दे ही झूठा कर गया, तो मैं इसका भोग लवावा ते किवें लवावा। अज पूजा नहीं हुई, अज ठाकरां दा इशनान नहीं होया, अज ठाकरां दे अगों दूध नहीं रखा गया, दूध नहीं पिलाया गया। आप बैठे ने सोच दे, पिता नाराज होवेगा, पिता औखा होवेगा। इस तरह दियां सोचां दे आप पए ने, ते आप दे अंदरों अमर धुनि इंज उठी, ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्व मही। हे प्रभु, जद मैं सोचया कि तेनु इशनान करावा, ता तू मच्छी हो के पहले आप ही जल दे इशनान कर रहे हैं, मैं तेनु की इशनान करावा। हे प्रभु, जद मैं तेनु सोचया, तेरे बारे सोचया कि इशनान करावा, ता ए भी विचार पैदा होए कि इशनान ते उसनु कराया जांदा है जो मैला हो जाए। क्या तू मैला हो जाना है? साहिब कहंदे ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज, हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। तू ते उज्जल है, तू ते पावन है, तू ते पवित्र है, मैले ते असी हो जाने। सड़ा तन मैला, सड़ा मन मैला, हे प्रभु तू ते निर्मल है, तू ते स्वच्छ है, तू ते पावन है, तू ते अति पवित्र है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे ने, इशनान ते मैं तेनु ता करावा कि तू मैला होवे, पर तू ते कदी मैला होंदा ही नहीं, और तेनु की इशनान करावा, तू जल जंतु होके अठे पैर जल विच रह रहे हैं, सागरां विच रह रहे हैं, दरियावां विच रह रहे हैं, झीलां विच रह रहे हैं, तेनु की इशनान करावा। इंज ब्रह्म ज्ञान दा पूर्ण बोध भगत नामदेव जी महाराज दे अंदरों पैदा होया, हे प्रभु जल विच तू, मच्छी विच तू, तू ते व्यापक है। ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। श्री नामदेव जी महाराज अगां फुल्लां बारे ऐसा कहंदे ने, हे प्रभु जद मैं सोचया कि तेनु फुल्लां दी माला बना के पहनावा, ते तू तितली होके, शहद दी मक्खी होके, भौरा होके आप ही पहले रस ले लेना है, तेनु की मैं माला पहनावा। जद मैं सोचिया तेनु दूध पिलावा, पर तू बछड़ा होके आप ही पहले दूध पी लेना है, आप ही भोग ला लेना है, गऊ तू, बछड़ा तू, दूध तू, तू ही तू है। ईबे बीठल ऊबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थान थनंतर प्रणवे नामा, पूर रहो तू सर्वमही। इत्थों ऐसा भी पता चलता है कि श्री नामदेव जी महाराज निर्गुण ब्रह्म दे उपासक ने, व्यापक ब्रह्म दे उपासक ने। आप दे ऐसे बोल भी ने, हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत, नामे सोई सेव्या, ना देहुरा ना मसीत। हिंदू लभदा है मूर्तियां देच प्रभु नो, मुसलमान लभदा है खानकाह देचो, पर नामदेव जी महाराज कहंदे ने, मैं ते जिधर देखदा तेरे तो बिना कुछ है ही नहीं, तू ही तो है। इसनो श्री नंदलाल जी महाराज ने इंज बयान कीता है, ब्राह्मण मुश्ताक बुद्ध, जाहिद फिदाए खानकाह, हर को जा जामे मुहब्बत, दीदा एम सरशारस्त। ब्राह्मण लभदा तेनु बुतां दे चों, और मुस्लिम लभदा तेनु खानकाह दे चों, पर हर को जा जामे मुहब्बत, मैनु ते हर थां ते तेरी मुहब्बत, तेरा प्यार ही दिखाई देंदा है, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, हर पासे तू ही तू है। तो श्री नामदेव जी महाराज कहंदे, हिंदू पूजे देहोरा, मुसलमान मसीद, नामे सोई सेव्या, ना देहुरा ना मसीद, तो फिर किथे है? जे मंदिर ते मस्जिद दे च नहीं तो फिर किथे है? तो नामदेव कहंदे, सबे घट राम बोले, राम बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे, मेरा राम घट घट दे च बोल रहे है, और राम तो बिना कौन बोल सकता है, राम ही बोल रहा है, पशुआं दे च राम ही बोल रहा है,
पक्षियां

ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਨੇਕ ਭਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਮਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭੀਮ ਭੇਰੂ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਠੇਠ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਸਨ। ਵਿੱਦਿਆ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਚੁੰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੰਡਿਤ ਬਣੇ। ਸਮਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਛੱਡੀਆਂ। ਆਪ ਗ੍ਰਸਥੀ ਸਨ। ਆਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪਦਮਾਵਤੀ ਸੀ। ਸਮਸਤ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੀਤ ਤੇ ਸੰਗੀਤ। ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਦੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ, ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਜਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਲਿਖਣ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਪੰਡਰਪੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਤਮਾਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਲਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿੱਠਲ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਗੀਤ ਜੋ ਭਗਤੀ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਵਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਛੰਦ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੀਤ ਦੀ ਲੈਣ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੌਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਕਰ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਸਹਿਜ ਧੁਨ ਗਾਵੇ, ਲੀਲਾ ਚਲਿਤ ਵਖਾਣ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਖੜ ਇੱਕ ਨਾ ਆਵੜੋ ਬਨ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਕਰ ਆਵੇ, ਰੋਜ਼ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਦੀ ਤੱਟ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜਦ ਕਾਫੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਨਾਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ ਲੋਟੇ, ਅੱਜ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿਨ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਗੀਤ ਗੋਵਿੰਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਦੇਵ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਐਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਬੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤੀ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਘਰ ਲੋਟੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀ ਪਤੀਵਰਤਾ ਸੁਪਤਨੀ ਪਦਮਾਵਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਰਨ, ਤਾਂ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ
तो पति दे दुख विच पत्नी भी शामिल हुई। और यह हकीकत है, जब कोई महान दार्शनिक, महान कवि किसे उलझन विच फसदा है और उस तो किसे समस्या का समाधान नहीं आता, या उसके दिमाग विचों गीत दियां लहरां नहीं निकलदियां, तो जिहड़ियां उस वक्त पीड़ा ते तकलीफ दर्द उसके हिरदे विच पैदा होंदा है, ये वो कवि ही जानता है, ये वो ही दार्शनिक ही जानता है। तो काफी दुखी ते चिंतातर मन नाल रात नूं सौं गए। अज जैसे सवेरे उठे ते आपने रोजमर्रा दे कर्म दे मुताबक ग्रंथ चुकया, पर पत्नी ने आख्या नहीं, तुसी पहले जाओ नदी तट ते इशनान करो। रोजमर्रा दे ब्राह्मण दे जड़े कर्म ने उनू निभाओ, प्रभु भक्ति करो, नितनेम करो, फिर इस ग्रंथ नू लिखण दी कोशिश करो। ओ गैबी शक्ति रखण वाले परिपूर्ण परमात्मा आप बख्शिश करनगे, आप रहमत करनगे। किन्ने ने पत्नी दी ये गल मन चिंतातुर मन दे नाल श्री जयदेव नदी तट दी तरफ जा रहे ने, सोच दे आया कि कोई लैन कोई पंक्ति दिमाग दे चों उभरे, पर कुछ उभर भी दिखाई नहीं देंदी। अज हिरदा ऐसा अमावस दी रात बने आया है जिदे च कोई चमकदा होया मामूली जिया तारा भी नहीं, स्यारा भी नहीं। कहिंदे ने इधर जयदेव रुखसत होए नदी तट दी तरफ, भाई साहब भाई गुरदास जी कहिंदे ने गुण निधान घर आए के भगत रूप लिख लेख बनावे। जयदेव दा ही कोई रूप धारण करके जयदेव दे घर आया ते गीत गोविंद दियां दो पंक्तियां लिख दित्तियां, सुनहरी स्याही दे च लिखियां, जबकि सारा ग्रंथ काली स्याही दे च लिखे। लिखदे आया जद पद्मावती ने वेख लिया तां ओ भज्जी होई आई ते कहन लगी रस्ते च ही वापस आ गए, इशनान नहीं कीता, नितनेम नहीं कीता, बंदगी नहीं कीती। ता जयदेव जो वास्तविक गुण निधान प्रभु आप सन, कह लगे पंक्ति फुर गई सी, लिखण लई वापस आ गया। ग्रंथ संपूर्ण हो गया, ग्रंथ मुकम्मल हो गया, गीत गोविंद संपूर्ण करके अलोप हो गई ए अगम्य शक्ति। पद्मावती भोजन बनाने दे चलेन, इतनी देर दे श्री जयदेव जी महाराज नदी तट तो इशनान करके वापस आए, गोविंद गोविंद दी धुन गीत अलापदे हैं। घर विच प्रवेश होंदे हैं की देखदे ने, पत्नी भोजन छक रही है ते जयदेव कहंदे ने मैं ब्राह्मण होके कुछ दिन नित दे कर्म भुल गया सी, पर तू भी भुल गई, मैनू खिला के ही तू खांदी होंदी सी, अज की हो गई, बहुत भुख लगी। कहन लगे नहीं, तुसी ग्रंथ संपूर्ण कीता ना, थानू बहुत खुशी हुई सी ते उस खुशी खुशी च मैं थानू भोजन छकाया है, पर हुण खुशी इतनी प्रबल है कि थानू छकिया होया भोजन भी याद नहीं रहा। जयदेव सुन के दंग रह गया, हैं मैं भोजन छकिया और गीत गोविंद संपूर्ण हो गया है? हां संपूर्ण हो गया, तुसी खुद ते कहे, और वो दो लाइना तुसी सुनहरी स्याही दे नाल लिखिया ने, मैं खुद वेखिया ने। भज्जे हुए जयदेव गए ग्रंथ नू खोलदे ने, वाकई ग्रंथ संपूर्ण दो पंक्तियां सुनहरी स्याही नाल लिखिया गई ने। अखर पढ़ प्रतीत कर होए विस्माद ना अंग समावे, जैसे उस पंक्ति नू पढ़दे ने विस्माद घर दे चले गए, अश्चर्यता ते रहस्य दे चलीन हो गए। एकदम आप ते सुरूर तारी होया, अरदास कीती, हे त्रिभुवन धनी, हे परिपूर्ण परमात्मा,
तू मेरे दिमाग विच ही थोड़ी शक्ति पा देंदा कि मैं आप लिख लेंदा। ये खेचलां तुसी क्यों कीतियां? तां कहिंदे ने अलहाम होया, आकाशवाणी होई, अंतर आत्मा बोली, जय देव जान बुझ के असी तेरे दिमाग विच ये कमी पाई, खुद लिखियां ताकि तेनू किधरे अहंकार ना हो जाए कि इतने वड्डे ग्रंथ दी रचना मैं कीती है, इसका करता मैं। ते जद भी किसी भगत नू इस प्रकार का अहंकार हो जाता है ते अपने आप नू करता मन लैंदा है, मेरे नालों उसका संबंध टुट जाता है। ते तू मैनू इतना प्यारा लगे है, मैं नहीं चाहता सी कि तेरे ते मेरे विच कोई वित होवे। बार बार धन्यवाद दे नाल भरे जय देव अश्कबार हो, बार बार सजदे विच होए, हे प्रभु लख लख तेरा शुक्र, अज पता चलिया जो मैं बोलदा वो तेरी शक्ति, जो मैं वेखदा वो तेरी शक्ति है, जो मैं चलदा ये भी तेरी शक्ति है, जो मैं करदा ये भी तेरी ताकत है, और जो मैं सोचदा हे प्रभु ये भी तेरी शक्ति है। वास्तविक मेरे रोम रोम विच तू ही काम कर रहे हैं, तू ही वसे हैं, तू ही रमिया है। श्री जयदेव जी महाराज का यह गीत गोविंद नामक ग्रंथ भगतां दी दुनिया च बहुत ही प्रसिद्ध है, और इनू पढ़ पढ़ के भगत जन आनंद लेंदे ने। गीत गोविंद दे कुछ हिस्से बकायदा प्रकाशित हो चुके ने, और इन्हां गीतां विच भक्ति भाव ज्ञान वैराग सब कुछ दैवी गुण समो दिते ने भगत श्री जयदेव जी महाराज ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच आप दा एक संस्कृत विच बड़ा ही सुना पदा उचारण किया होया जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच गुजरी राग दे अंदर दर्ज है। इस पदे दियां अस्थाई पंक्तियां ये ने, केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं, हे मन केवल राम नाम दा रमण कर ते उस दे ही अमृत स्वरूप दा पान कर। राम कौन, राम कैसा है, किस राम दा अमृत पान करिए, किस राम दा चिंतन करिए, किस राम दे सुरत लीन करिए, तो उस राम दी याद तशरीह कर देने, उस राम दी याद व्याख्या कर देने। इस पदे दे परमाद पुरख मनोपिमंग सत्याद भाव रतन परमद भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन। परमाद जो परम आद है, अनादि है, जिसदा मूल नहीं लभ्या जा सकदा, और जो सब दा मूल है, जिदी बुनियाद दा कोई पता नहीं, जो सब दी बुनियाद है, जो सब दी जड़ है, जो सब दा आधार है, ऐसा जिड़ा ब्रह्म है वो अनादि है। परमाद पुरख वो फिर पूरे होया है। पुरख तो मुराद पुरी पुरी बसंता सा पुरखा, जो पुरियां पुरियां विच रमे आया व्यापक है वो पुरख है। परमाद पुरख मनोपिमन मनोपमा तो रहत है, दरअसल मन अपने अनुभव विच पूर्ण तौर ते परमात्मा नू नहीं लिया सकदा। मन पूर्ण तौर ते जिसनू सोच नहीं सकदा, मन जिसकी पूर्ण तौर ते कल्पना नहीं कर सकदा, ते जिसकी मन ही कल्पना नहीं कर सकदा उनू जबान नाल कथन करना ते बहुत औखा, उनू अखां नाल ते वेखना बहुत औखा। क्यों कि अखां जिथों तक वेखदियां ने उस तो भी अगे की कल्पना मन कर सकदा है, जबान जिथे तक कथन करती है उथों तो भी अगे की कल्पना मन कर सकदा है, कन जिथे तक सुन सकदे ने उस तो भी ज्यादा कल्पना मन कर सकदा है। कल्पना की प्रवास बड़ी बुलंद है, कल्पना बहुत दूर तक चली जाती है, पर श्री जयदेव जी महाराज कहते ने चाहे कल्पना की प्रवास कितनी उच्ची क्यों ना हो, कितनी दूर दी क्यों ना हो, कितनी गहरी क्यों ना हो, फिर भी परमात्मा मेरी कल्पना विच नहीं आऊंगा, वो किसी की कल्पना विच नहीं आऊंगा। मन की सोच तो परे, मन के विचार तो परे, इस वास्ते आप कहते मनोपिमंग मनो उपमा तो रहत है।
परमाद पुरख मनोपिमं सत आदि भाव रतन ओ सत चित आनंद आदिक भावा दे नाल रत आया है। ओ सत है, ओ चित प्रकाशमयी है और ओ आनंद स्वरूप है। एक पंक्ति देच राम दी व्याख्या इंज कर देने, परमाद पुरख मनोपिमं सत आदि भाव रतन परम अद्भुतन परम अद्भुत रूप है, परम आश्चर्य रूप है। मनुख उत्थे आश्चर्य हो जांदा है, हैरान हो जांदा है, विस्माद हो जांदा है। जिन्हू वेखे ते पूरा वेख ना सके, जिन्हू सोचे ते पूरा सोच ना सके और जिसनू चखे ते पूरा स्वाद ना मान सके। फिर भी वो बच रहे जिन्हू सुने ते फिर भी पूरा ना सुन सके। उत्थे विस्माद दा तारी होना कुदरती गल है, उत्थे आश्चर्यता ते रहस्य दा पैदा होना कुदरती गल है। कहिंदे ने एक बच्चा रहस्य विच जीवदा है, एक कवि रहस्य विच जीवदा है, एक संत रहस्य विच जीवदा है। अजोका समा चूंकि इस ढंग दा बतीत हो रहा है कि हर मनुख ऐसा कहिंदा मैं सब कुछ जानदा, चाहे कुछ भी नहीं जानदा, मैं ते सब कुछ वेख लिया, मैं ते सारा सुन लिया, मैं उसनु पूर्ण तौर ते सोच लिया। अगर ऐसा कोई दावा करे तो आश्चर्यता नहीं पैदा होंगी, रहस्य नहीं पैदा होंगा, विस्माद नहीं पैदा होंगा। इस तरह का दावा करने वाले अजोके समय च बहुत ज्यादा ने, क्योंकि अज के समय च जितने कॉलेज ने, जितने विद्यालय ने, ये पहले नहीं सी। अजोकी विद्या ने भावे कुछ दिता है या नहीं, लेकिन रहस्य नु खत्म जरूर किया, विस्माद नु खत्म जरूर किया। मनुख दी दुनिया विच जो एक विस्माद सी, रहस्य सी, वो खत्म हो गई, वो अज देखण नु नहीं मिलता। हां बच्चे कोल ये विस्माद है, अजे अबोध है, उसका विस्माद अबोध अवस्था ते खड़ा है, अचेत अवस्था ते खड़ा है। फिर कवि कोल विस्माद है, या इन कह लो कविता का जन्म ही विस्माद तो होंदा है, कविता का जन्म ही रहस्य तो होंदा है। तो कवि रहस्यवादी होंदे ने, संत रहस्यवादी होंदे ने, वो जो कुछ भी वेखदे ने वो ऐसा महसूस करदे ने कि एक रेत दे जर्रे नू भी पूर्ण तौर ते वेखना बड़ा औखा है, क्योंकि वह भी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठा है, बहुत कुछ छुपाई बैठा है। सूरज नू ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक जर्रे नू भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। एक दरखत नू ते पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है, पर एक पत्ते नू भी पूर्ण तौर ते देखना बड़ा कठिन है। उहदे विच भी बहुत कुछ छुपया होया है, बहुत कुछ गुप्त है, बहुत कुछ सूक्ष्म है। तो जैसे ये बोध होंदा है कि बहुत कुछ सूक्ष्म छुपया होया है जो मैं नहीं देख सकता, बहुत कुछ अदृश्य है।

अधेर गया है, सवेर का वक्त है, सूरज दिया किरणा उस गंदगी दे ढेर नू छू रही ने। इस सारा दृश्य वेख के रविंद्रनाथ टैगोर नच उठे, कहन लगे हे प्रभु तेरी आश्चर्यता जो मेरे ते अज प्रगट हुई है वो ये कि मैं तेरी निर्लेपता दा ज्ञान हासिल कर ले। सूरज दिया किरणा गंदगी नू छू रही ने, फिर भी किरणा गंदियां नहीं हो रही, फिर भी सूरज गंदा नहीं हो रहा। तू मेरे गंदे शरीर दे रोम रोम विच बैठा है, फिर भी तू गंदा नहीं है, तू निर्लेप है, प्रकृति तो परे है, सब कुछ ते विच है, सब कुछ ते दूर है, सबके मत सबों ते बाहर, सारियां देश तू है पर फिर भी सारियां तो बाहर है, निर्लेप है। तो श्री जयदेव जी महाराज कहने ने परमद भूतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन, जिसका चिंतन करन दे नाल सर्व प्रकार दियां गतियां प्राप्त हो जांदियां, हर पासे दी गति मनुख कर लैंदा है, भाव हर पासे मनुख दी पहुंच हो जाती है, सब कुछ मनुख प्राप्त कर लैंदा है। इस वास्ते ऐसा जो परमात्मा है प्रमाद पुरुख मनोपिमंग सत्यादि भाव रतन परमद्भुतन परकृत परन जद चिंत सर्वगतन केवल राम नाम मनोरमंग बद अमृत तत्मयन। ऐसा जो अमृतमयी राम है परमात्मा दा नाम है उसनु तू पान कर, उसने ही अमृत स्वरूप दा जो है तू आनंद मान। अगा चल के इसे ही पद विच श्री जयदेव जी महाराज कहंदे ने कि न दानोद जस सिमरण न जन्म जराद मरण भयं, नहीं आउंदा जिदे सिमरण करन दे नाल जन्म दा दुख मरण दा दुख ते बुढ़ेपे दा दुख। साढ़े देश के ऋषि मुनिया ने ये तीन दुख बड़े प्रबल मने ने, जन्म दा दुख मरण दा दुख ते वृद्ध अवस्था दा दुख। भगत कबीर भी इसनु मनदे ने, जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल बही नहीं बाणी, भजले रे मन सारंग पानी। बुढ़े कुल तन ते है पर कुछ कर नहीं सकता, दिमाग है पूर्ण तौर ते सोच नहीं सकता, हाथ पैर हैगे ने पूर्ण तौर ते कुछ कर नहीं सकते, चल नहीं सकते। इस वास्ते वृद्ध अवस्था नु पूर्ण वृद्ध अवस्था नु रोगमयी अवस्था करके आख्या। तो श्री जयदेव जी महाराज कहन जेदा सिमरन करन दे नाल नहीं आउंदा जन्म दा दुख मरण दा दुख, क्योंकि मुड़ के जमना नहीं तो फिर मरना ही नहीं, ते नहीं आउंदा बुढ़ेपे दा दुख। साहिबगुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमान करदे ने, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी, हरी दा जो जन है ओदे नेड़े ए जन्म मरण ते बुढ़ेपा जरा नहीं आउंदे। इत्थे इक तरक खड़ी होवेगी, चलो जन्म मरण तो भगत बच जांदा है पर बुढ़ेपे दे रोग तो किस तरह बचता है। एक पंक्ति है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च, गुरमुख कदे बुढ़े नाई जिन अंतर सुरत ज्ञान, जिद्दी सुरत प्रभु नाल जुड़ी हुई है, जिथे आत्म ज्ञान मौजूद है, ऐसा बंदा चाहे शरीरक तल ते वृद्ध भी हो जाए पर ओदिया उमंगा हुलास दे च कोई फर्क नहीं पैंदा, ओदी चेते शक्ति दे च कोई फर्क नहीं पैंदा, उसदे चेहरे दे उत्ते ताजगी बनी रहिंदी है, उसके चेहरे के उत्ते आनंद बनिया रहिंदा है। उन्हें वेख के कोई ऐसा नहीं कह सकता कि बुढ़ा हो गया है, वृद्ध हो गया है, ये कमजोर हो गया है, नहीं, उसका हुलास उसकी उमंग उसकी तुरंग और उसकी चेते शक्ति पूर्ण तौर पर कम कर दिए, प्रभु की बंदगी का एक महान फल है। इस वास्ते आत्मदर्शी पुरुषा ने कहा है कि नाम सिमरन करने वाले दे कोल बुढ़ेपे का रोग भी नहीं आता, रोग सोग दुख जरा मरा हर जने नहीं निकटानी। श्री जयदेव जी महाराज इस पावन पवित्र पदे दे फरमान करते हैं, ना दनोद जस समरेन ना जन्म जराद मरण भयं, इच्छस जमाद पराभयं जस्वस सुकृत कृतन। जे तेनू इच्छा है ए बंदे कि तू जमा दा तिस्कार करे जन्म मरण तो बचे, ता जस सुकृत उस परिपूर्ण परमात्मा दा जस गायन कर, जस्वस सुकृत कृतन शुभ कर्म कर,
ते परिपूर्ण परमात्मा दा जस गायन कर।

0: भाव परमात्मा का जो जस है यही सुकृत है, यही पूर्ण तौर ते शुभ कर्म है। इसनु तो कर्म, इसे एक शुभ कर्म तो अनेक शुभ कर्म जन्म लेंदे ने। अगर ये एक शुभ कर्म नहीं तो फिर कुछ भी शुभ नहीं है। शुभ कर्म वो है जब हिरदा शुभ दे नाल जुड़दा है तो शुभ परमात्मा है, शुभ ईश्वर है। जब शुभ का चिंतन किया जाता है तो हिरदा शुभ हो जाता है, तो जैसे हिरदा शुभ होता है ऐसे ही मनुख शुभ चिंतक बन जाता है। वो हर एक की शुभ कामना करता है, वो हर एक का शुभ चिंतक बनता है। पर शुभ होए बिना शुभ चिंतक होना बहुत कठिन है, शुभ होए बिना शुभ कामना करनी बहुत औखी है। कामना मैलियां होनगियां और चिंतक चिंतन जो है माड़ा ही जो है चलेगा। तो परिपूर्ण परमात्मा का कल्याणकारी नाम, उसका जो शुभ कर्म है उसका चिंतन ओ तो कर। इच्छस जमाद प्राभयं जस्वस सुकृत कृतं भवभूत भाव समव्यं प्रसन्न परमन प्रसन्न मिदन। श्री जयदेव जी महाराज कहते हैं जो त्रैकालदर्शी है और एक सार परिपूर्ण जो रमया होया है, व्यापक है, भवभूत भाव समव्यं जो हुण भी है, पहले भी सी, अगा भी जो है होवेगा, जो हर समय मौजूद है, त्रैकालदर्शी है, भवभूत भाव समव्यं परमन प्रसन्न मिदन, जो अत्यंत प्रसन्न चित्त है, जो अत्यंत परम आनंद विचलीन है, तो उसका ही कल्याणकारी जस उच्चारण कर। यही शुभ कर्म है, यही शुभ चिंतन है। अगा चल के श्री जयदेव जी महाराज फरमान कर देने, हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा, हरीदा भगत मन बाणी शरीर करके प्रभु नाल जुड़े हुए है। ऐसा जो हरीदा भगत है, हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा, जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा। ऐसा जो भगत है, जो मन करके शरीर करके बाणी करके प्रभु विचलीन है, ओदे सामने जग तुच्छ है, जोग साधना भी तुच्छ है, और ऐसे भगत दे सामने दान भी कोई मायने नहीं रखता। भाव दानी तो भी ओ भगत उच्चा है, जोगी तो भी ऐसा भगत उच्चा है, और जग करने वाले तो भी ऐसा भगत उच्चा है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी मन दिए कि इना सारे कर्म कांडा तो भगत दी जिंदगी उच्ची है। जोग जग नै फल तुम मानो जो प्रभ जस बिरसरावे। जिथे भगत पहुंचे है उथे जोग जग दी पहुंच नहीं है, दान दी पहुंच नहीं है। इस सब कुछ तो उच्चा जीवदा है भगत। हर भगत निज नहे केवला रिद कर्मणा बचसा, जोगेन किंग जगेन किंग दानेन किंग तपसा। इस पदे दे अखीर विच आप कहंदे ने, गोविंद गोविंदेत जप नर सकल सिद्ध पदन, जय देव आयो तस्सु फटन भवभूत सर्वगतन। गोविंद गोविंदा ऐ मनुख जाप कर, और इस तरह जाप करदे ही तेनु सारी गतियां दी प्राप्ति होवेगी, तेनु सब कुछ दी प्राप्ति होवेगी। गोविंद दे चिंतन विच ही संसार दे सुख ने, परमार्थ दे सुख ने। गोविंद दे सिमरन विच ही लोक सवर जांदा है, परलोक सुहेला हो जांदा है।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: Family Care Pharmacy.
3: पूरे BC विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
2: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
3: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
2: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
3: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
4: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
2: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
5: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gurdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gurdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GurdaleBaudGroup.com.

ओंकार सतनाम करता पुरख निरभो निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे चार युगां दा जिक्र बार बार आया, चौ युगां का हुण निबड़ा नर मनुखां नूं एक निधाना। गर्ज के चारें युग एक ऐसी श्रृंखला है जो समय के खड़ी है, मनुख दे मानसिक मंडल ते विचारां ते खड़ी है। समय विच युगां दी तब्दीली ए एक मनोत पुरानी है, इन्हों मिथ भी कह सकते हैं। अस्थान दे युगां दी मनोत जैसे किसी थां ते कथा कीर्तन हो रहा है, वो जगह सचयुग है, वो जगह बैकुंठ है। कहो कबीर कहिए काहे साध संगत बैकुंठे आए। जिथे सत्संग हो रहा है बैकुंठ है, जिथे सत्संग हो रहा है सचखंड है, जिथे सत्संग हो रहा है सतयुग है। इते अस्थान दे पर तीसरी घटना जो है मानसिक मंडल दे ए विज्ञानक है, सच्चाई है, एक तथ्य है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग मनुख दिया मानसिक अवस्थावान है। इक्को समय विच घर दे दस जियां विचों कोई सतयुग दे जी रहा होवेगा, कोई त्रेते विच जी रहा होवेगा, कोई द्वापर विच जी रहा होवेगा और कोई कलयुग विच जी रहा होवेगा। मनुख नूं वेख के असीं कह सकदे हां इह ते सतयुगी जीव है, और मनुख दी तरजे जिंदगी व्यवहार आचार नूं वेख के असीं कह सकते हैं इसे मेरा ही कलयुगी जीव है। ये ठीक है सनातन मत देच भी और गुरमत दे अंदर भी युगां दा शरीर रूप भी मन लिया गया है। जैसे कहानियां आउंदियां ने कबीर नू कलयुग मिलिया, गुरु नानक नू कलयुग मिले, मरदाने नू कलयुग मिलिया, पुराणी थां ते कलयुग प्रगट होया। कलयुग नूं एक व्यक्ति मन लेना ये मिथ है, पर पुराना एक ढंग से बयान करन दा जैसे बुराइयां नूं ही शैतान आखिया जांदा है, पर इस्लाम दे शैतान दा एक वजूद मन लिया गया, उसका एक आकार मन लिया गया, शैतान नूं एक व्यक्ति मन लिया गया। दरअसल शैतानियत शैतान इति बुराइयां इति जो अवगुण है। इसी तरीके दे नाल देव बिरतियां पवित्र बिरतियां प्रकाशमई बिरतियां जिस दे अंदर चल दिया ने वही देवता, और जो अवगुण हारा है अचेत ते अंधकार विच जी रहा है वही राक्षस है। वास्तविक ये एक सच्चाई है, देवता होना राक्षस होना शैतान होना भगवान होना ये मनुख दे मन ते आधारित है। इक्को ही समय कोई शैतान हो सकता है, कोई भगवान दा रूप हो सकता है, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है इक्को ही व्यक्ति सवेरे ते
ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਵਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ, ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ। ਯੁੱਗ ਯੁੱਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚੇਤਨਾ ਸਰੀਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਕਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਸਾਧਨ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਦਲ ਗਏ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਵਕਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਲਕਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ, ਸਾਧਨ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਵਕਤ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬੈਰੂਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਸਤਵਿਕ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਜਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਥਮ ਸਤਯੁੱਗ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈਏ, ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਤੇ ਸਾਧਨ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਯੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ, ਧਰਮ ਅਗੇ ਰਥ ਵਾ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਵਾਸਤਵ ਕੀ ਸੀ? ਸਤਯੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ, ਧਰਮ ਅਗੇ ਰਥ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਲਕਸ਼ ਧਰਮ ਸੀ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੱਚਾਈ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਈਸ਼ਵਰ, ਸੱਚ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਸੱਚ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੰਤੋਖ ਸੀ, ਮਨੁੱਖ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਐਸਾ ਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਪਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਜਤੇ ਕਾ, ਜੋਰ ਅਗੇ ਰਥ ਵਾਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਕਸ਼
जोरावर होना, ताकतवर होना, शक्ति होनी चाहिए। बाहां दे बाहुबल इतना होवे जैसे हजार बावां दे बल होंदा है। ऐसे नाम भी ने प्राचीन महापुरुषां दे, सहनसर बाहु, हजारां बाहां वाला। असी किधरे किधरे देवी देवतावां दे चार चार हाथ बनाए ने, अठ अठ हाथ बनाए ने, दस दस हाथ बनाए ने, और किसे दे दस दस सिर भी बनाए ने, दह सिर रावण। ना प्राकृतिक रूप दिच किसे दे दस सिर होंदे ने, ते ना ही दस हाथ होंदे ने। सिर दिच सोच शक्ति आम मनुखा नालों ज्यादा होवे, चेते शक्ति आम मनुखा नालों ज्यादा होवे, कई गुणा ज्यादा होवे। विचार शक्ति आम मनुखा नालों दस गुणा ज्यादा होवे, तो आपे दहसुर हो गया। ते दो बावां दी ताकत इतनी होवे जैसे हजारां बावां, ते हजारां बावां उसदे अधीन होवन, तो फिर सहनसर बाहु। ये बयान करन दे अपने ढंग ने, वरना एक शरीर दे हजार हाथ नहीं हो सकते। अगर हजार हाथ ने तो शरीर भी पहाड़ जैसा होवेगा, अगर दस सिर ने तो शरीर भी हाथी नालों भी कई गुणा वड्डा होना चाहिए। नहीं, दस सिरां जैसी चेते शक्ति, दस सिरां जैसी सोच शक्ति, दस सिरां जैसी विचार शक्ति जिस दे अंदर सी, असी उसनों दह सिर आख्या, दसां सिरां वाला। और जेदे दो हथ हजारां हथां नूं काबू कर सकन, अपने अधीन कर सकन, उसनों असी सहन सच बाहु करके आख्या। बयान करन दे ढंग ने जीवन दा लक्ष्य जद बन गया जोरावर होना, मेरे दो हत्थां दे बल हजारां हत्थां जैसा होवे। ताकत शक्ति जद जीवन दा लक्ष्य बन जाए तो मनुख अशांत हो जांदा। जीवन दे दो ही लक्ष्य हो सकदे ने, शांति या शक्ति। शांति प्राप्त करन दे साधन होर ने, शक्ति प्राप्त करन दे साधन होर ने, और बिल्कुल विपरीत ने। त्रेते रथ जते का जोर अगे रथवा, तो फिर ताकत ते ताई हो सकती है, शरीर दे जती होवे। और बार भी ताकत मनुख ता वधा सकदा है, संजम नाल चलन वाला होवे, सोच के चलन वाला होवे। तो जीवन दा लक्ष्य जद ए बन जाए पहलवान ही होना है, तो फिर जत ही उसका साधन बनेगी। बहुगिणती दे जद जीवन दा लक्ष्य ए बन जाए, तो फिर ओ त्रेता युग है। द्वापुर रथ तपे का सत अगे रखवाओ, इथे सत तो मुराद उच्चा आचरण इखलास, सत तो मुराद सच नहीं है, वास्तविक इथे सत दे अर्थ आचरणशील होना, आचारशील होना, सुंदर आचरण वाला। पर बिना तप तो ते नहीं हो सकता, ते तपश तप की इंद्रियां दा दमन, अखां नूं काबू दे च रखना है, कन्नां नूं काबू च रखना है, जबान नूं काबू दे च रखना है, हथ पैरां नूं काबू दे च रखना है, मन नूं काबू दे च करन दी कोशिश करनी है, ताकि जीवन दे सत
प्रगट हो सके। कलयुग तो शुरू करिए ते द्वापर दूजा पर, और जिस युग दे असी जी रहे हैं, धन गुरु नानक देव जी महाराज इस दे बारे इन फरमान कर देने, कलयुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवा। जद कूड़ माया जीवन का लक्ष्य बन जाए तो तृष्णा उसकी प्राप्ति का साधन बनती है। तृष्णा लोही नहीं तो फिर तरह तरह के पदार्थों की प्राप्ति किवें करेगा? संतुष्ट है तो प्राप्त कर भी नहीं सकता। तृष्णा झूठ न प्राप्त करने का साधन बनती है, उपराला बनती है। कूड़ किसनों कहते ने? जो दिखाई भी देवे, प्रभावित भी करे ते पकड़िए हथों निकल जाए। जगत स्थिर नहीं है, अस्थिर है, सब कुछ चलायमान है। इस वास्ते इसनों कह देता है कूड़ झूठ। कूड़ मैया कूड़ बीबी खप होए खार। धन गुरु नानक देव जी महाराज से कहने ने सब कुछ कूड़ ही कूड़ है। क्यों किस नाल की जय दोस्ती, सब जग चलन हार। किसनो पकड़िए, सब कुछ चलायमान है। न इथे दिन टिके होया है, न इथे रात टिकी हुई है, न इथे बचपन टिके होया है, न इथे जवानी टिकी हुई है, न इथे बुढ़ेपा टिके होया है। दिन नहीं टिकया, रात नहीं टिकी, जीवन नहीं टिकया, तो फिर कुछ भी टिके होया नहीं है। सब कुछ चलायमान है। जो चल रहे होवे ते चलायमान होवे उसे नु कह देंदे ने चंचल। समस्त संसार चंचल है, पकड़न की कोशिश करांगे हथों निकल जाएगा। दिन नु पकड़न की कोशिश करिए गया, रात नु पकड़न की कोशिश करिए गई। इस तरह जवानी नु पकड़न की कोशिश करिए हथों निकल जाएगा, जीवन हथों निकल जाता है। जो हथां दी पकड़ दे ना आवे, जैसे पवन नू पकड़न दी कोशिश करिए ते हथां दे बंद करिए, मुट्ठी दे बंद कर दें हवा निकल जांदी, पवन गई। जो पकड़ दे ना आवे, चलायमान है, उसनू चंचल आख्या है, उनू कूड़ आख्या है। पर जीवन दा लक्ष्य कूड़ होवे, जीवन दी प्राप्ति लक्ष्य कूड़ होवे, बस एक कूड़ चाहिए, यही संसार चाहिए। तो फिर संसार अगर लक्ष्य है तो तृष्णा ही साधन बनेगी, लोभ ही साधन बनेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज से फरमान पे कर देने, वाकई ये युग लोभी युग है, बड़ा परबल लोभी युग है। हर समय जिसके अंदर देन की भावना होवे ते दे के खुश होंदा होवे, गुरबाणी कहती है गुरमुख है। पर हर वक्त लैण की भावना होवे ते लेके खुशी मिलती होवे, बस उसे नु आखिया गया है लोभी। बड़ी कीमती पंक्ति है, दित्ते नालों लिता चंगा मनमुख एवें जानी। किस तरह जानोगे?

और जिसनों दिता जाता है उसका भला भी मंगता है, ऐसी मनोवृत्तियां ने तो ऐसा जीव महान है। उसकी जिंदगी का लक्ष्य देन दे चाहे, और जे लैन दे चाहे तो लोभ ही। अगर कोड़ जोट पदार्थ संसार ही जीवन का लक्ष्य है तो प्राप्ति का साधन तृष्णा होगी, तृष्णालु का लक्ष्य कूड़ होता है, माया होती है, संसार होता है, पदार्थ होते हैं। और महाराज कहते ने मनुखी दुनिया ते जात मार के देखिए नानक कूड़ रहा भरपूर। कूड़ ते व्यापक है और बड़े व्यापक पद्धर ते चल रहे हैं। इतने से कोई किधरे सच बोल देवे ते हूं झूठ समझिया जाता है, पर झूठ बोले ते सच समझिया जाता है, क्योंकि व्यापक ओही है। हजारा पागलों के इकट्ठ किधरे कोई इकद सियाणा आ जाए तो हजारा पागलों की दृष्टि दे सियाणा पागल है या उसनु पागल कर देंगे। जैसे ये अनुभव है भीड़ जिस पासे चल रही होवे कल्ले नो उसे पासे चलना पैंदा है, या फिर पूरा संघर्ष करे। देखने दे चाहे भगत ते अवतारा दी जिंदगी बड़ी संघर्ष दे चलंगी, क्योंकि जिस पासे भीड़ सी अवतार उस पासे चलन नु राजी ना होए, और अवतार दा मतलब सी भीड़ दा रुख मोड़िए। रुख दे मुड़दे ही लक्ष्य बदल जांदा है, और भीड़ आखिर संघर्ष ते उतारू होवे तो अवतारा नु सोली ते चढ़ना पैंदा है, अवतारा नु कत्ती तवी ते बैठना पैंदा है, अवतारा नु पिंजरिया विच कैद होना पैंदा है। हैरानगी है कि जगत दे जितने चोटी दे सत्वादी ने उन्हां नाल संसार ने बड़ा अन्याय किया है, संसार ने बड़ी बेइंसाफी की थी। वास्तविक पागलों की भीड़ विच जो जितना सियाणा होवेगा उतना ही पागल कहलाएगा। दूर क्यों जाओ, इस भीड़ ने कह दिता सी गुरु नानक नूं, सतगुर आप कहिंदे ने कोई आखे भूतना को कहे बेताला, कोई आखे आदमी नानक विचारा। ए विचारा नानक भूतना हो गया, दीवाना हो गया, पागल हो गया। भीड़ ने ते गुरु नानक जैसी अजीम शक्ति नो महान आलम नो छोटी दे दार्शनिक फिलोसफर नो रब्बी चिंतक नो प्रभु दी मूर्ति नो भूतना कह दिता। हैरानगी है जो सारिया दे भूत ने उतारण आया है, जगत उसनु भूतना कहता है। जो हर एक दी जिंदगी नो ताल देन लई आया है, जगत उसनु बेताला कहता है। ऐसा क्यों? भीड़ तृष्णालुआ दी है, भीड़ मायाधारियां दी है। ते मायाधारी किसनों कहोगे जिसकी जीवन का लक्ष्य संसार है, पदार्थ है, जी रहे है पदार्थां दी खातर, जी रहे है संसार दी खातर। तो संसार वड्डा हो गया, पदार्थ वड्डे हो गए, धन ही महान हो गया, ये जीवन से कुछ भी नहीं है। जीवन उस दिन महान बनता है जब लक्ष्य इस जीवन तो उच्चा होवे, तो वो परम जीवन ही हो सकता है। ते परम जीवन परमात्मा ही है। जिन्ने चिर तक जीवन का लक्ष्य परमात्मा ना होवे उतने तक मनुख उच्चा नहीं हो सकता, महान नहीं हो सकता। तो ये विचारधारा ते खड़े सतयुग, त्रेता द्वापर ते कलयुग,